नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पे ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आज दिन है गुरुवार, सक संवत 1948, श्रावणा महीने की आज 8वीं तिथि है। साथ ही अंग्रेजी सन 2026 जुलाई महीने की आज 30वीं तारीख है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 5:58 हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं मीना स्वागत करती हूँ आज की पहली सभा में।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रही की आज की ताज़ा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही समय में यानी कि सुबह 6:10 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ भक्ति गीतों का। महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों का आनंद आप ले पाएंगे सुबह 6:30 पर।

सुबह 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। सुबह 7:05 पर आपको आज के दिन के विशेषताओं के बारे में जानकारी देंगे। विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 7:30 पर।

सुबह 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी समाचार प्रभात। 8:15 पर आप आनंद ले पाएंगे देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम का। आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज रिले की जाएंगे सुबह 8:30 पर।

सुबह 8:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुरों की रंगोली। सुबह 9 बजे आकाशवाणी की गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पुअर आंचलिक बातोरी।

स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले सुबह 9:15 पर आपको सुनवाएंगे खेलमा कार्यक्रम के तहत खेलमा भक्ति गीत जॉन एलियजर होंगलो और उनके साथियों की आवाज़ में। सुबह 9:25 पर रांगखोल कार्यक्रम के अंतर्गत रांगखोल पारंपरिक गीत आप सुन पाएंगे एल्विन ललरमथंग रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ में। जयंतिया कार्यक्रम के अंतर्गत जयंतिया भक्ति गीत आप सुन पाएंगे सुबह 9:35 पर। गायक कलाकार रहेंगे अतुबम ब्याम और उनके साथी। सुबह 9:45 पर ब्याते कार्यक्रम के तहत ब्याते आधुनिक गीत आप सुन पाएंगे रुआलथंग रेमा नामपुई और उनके साथियों की आवाज़ में।

सुबह 10 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का शाम के 5 बजे तक। लेकिन उसी बीच आप सुन पाएंगे दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार, दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार, 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार और शाम 4 बजे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का हाफड़ंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम को, सुनते हैं आस्था से भरी कुछ मधुर भक्ति गीत।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे भक्ति गीतों का। इसी के साथ ही समाप्त होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों का। इस सफर में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म का। इस गीत को गाया है उदित नारायण ने।

श्रोताओं, सोलिए फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म याराना से। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने।

0: श्रोताओं, कुमार सानू के गाए इसी गीत के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज का पोएम ऑफ द डे।
2: हेलो एवरीवन, माय नेम इज भावना गर्टी। टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोएम, पीपा सॉन्ग। द ईयर एट द स्प्रिंग एंड दिस एट द मोर मॉर्निंग एट सेवन The hillside, you peril, the larch on the wind, the snails on the thorn, God in his heaven, all right, with the world, Robert Browning. Thank you.
0: एलआरजेड एकेडमी की तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली भावना गर्ती की जुबानी आपने सुनी है प्यारी सी कविता। आइए बात करते हैं आज के दिन की विशेषताओं में के बारे में।

श्रोताओं, आज 30 जुलाई है। आज के दिन देश विदेश के इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। जानेंगे उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। शुरुआत करते हैं आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। मॉल्डन द्वीप को की खोज वर्ष 1825 में हुई थी आज के दिन। आज ही के दिन अमेरिका के लॉस एंजलिस में 10वें आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1932 में हुई थी। वनुआटू देश को 1980 में स्वतंत्रता मिली थी आज ही के दिन। श्रोताओं, ये थी आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। भारत की प्रसिद्ध चिकित्सा, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मभूषण सम्मानित मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म वर्ष 1866 में हुआ था आज के दिन। आज के दिन 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, सांस्कृतिज्ञ तथा सौंदर्य शास्त्री गोविंद चंद्र पांडे का जन्म वर्ष 1923 को हुआ था। हॉलीवुड अभिनेता और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर आर्नल्ड का जन्म वर्ष 1947 को हुआ था आज के दिन। श्रोताओं, ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। आइए अब जानते हैं उन व्यक्ति के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक थॉमस ग्रे का निधन वर्ष 1771 में आज ही के दिन हुआ था।

श्रोताओं, आज के दिन को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन के रूप में भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को यानी कि आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में इस दिवस की शुरुआत मानव तस्करी जैसी गंभीर वैश्विक समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से की थी। मानव तस्करी में लोगों को धोखे, लालच, बल प्रयोग या दबाव के माध्यम से श्रम, यौन शोषण, जबरन विवाह, भीख मंगवाने अथवा अन्य अवैध कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम्स, धोखेधड़ी के जाल में फंसे लोग। ये विषय ऑनलाइन नौकरी के झूठे वादे और साइबर ठगी जैसे जुड़े संगठित अपराधों के माध्यम से होने वाली मानव तस्करी की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कई लोग बेहतर रोजगार का लालच देकर विदेश ले जाया जाता है, जहां उन्हें जबरन ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य अपराधों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। ये दिवस हमें सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने तथा मानव तस्करी के विरोध समाज में जागरूकता फैलाने की प्रेरणा देता है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे मानव गरिमा और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर इस अमानवीय अपराध के खिलाफ आवाज उठाए और सुनिश्चित समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।

श्रोता, हम बात कर रहे थे आज के दिन की विशेषताओं के बारे में। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। जाते जाते आइए आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

श्रोताओं, आइए आरंभ करते हैं विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम। आज के विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैसे महिला वैज्ञानिक की, जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और अटूट हौसले से इतिहास रच दिया। साथ ही आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, आज हम इस विज्ञान विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला वैज्ञानिक की, जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और अटूट हौसले से इतिहास रच दिया था। हम बात कर रहे हैं मैरी क्यूरी की, जिनका असली नाम मैरी स्कॉल्डोस्का था। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वार्सो शहर में हुआ था। उनके पिता फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अध्यापक थे और माँ एक स्कूल की प्रधानाचार्य थी। बचपन से ही मैरी को पढ़ाई और विज्ञान में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन उनका बचपन बहुत संघर्षन से भरा रहा। जब वे सिर्फ 10 साल की थी, तब उनकी माँ का देहांत हो गया और कुछ ही समय बाद उनकी एक बहन भी इस दुनिया से चली गई। परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी मैरी ने कभी अपनी पढ़ाई और सपनों का साथ नहीं छोड़ा।

श्रोता, हम बात कर रहे थे मैरी क्यूरी और उनकी खोज के बारे में। उस दौर में पोलैंड में महिलाओं को यूनिवर्सिटी में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन मैरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुप्त रूप से चलने वाली फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। अपनी बड़ी बहन ब्रोनिया को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने लगभग 6 साल तक गवर्नेस यानी बच्चों को पढ़ाने का काम किया और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बहन की पढ़ाई पर खर्चा कर दिया। दोनों बहनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि पहले एक बहन पढ़ाई करेगी और बाद में दूसरी की मदद करेगी। जब ब्रोनिया डॉक्टर बन गई, तब उन्होंने मैरी को फ्रांस बुलाया। पेरिस पहुंचकर मैरी ने सर्बोन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन थी। कई दिन ऐसे होते थे जब उनके पास पेट भर खाना खाने के पैसे भी नहीं होते थे। सर्दियों में बिना ठीक से गर्म कपड़ों के पढ़ाई करना पड़ता था। फिर भी उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई में हमेशा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पेरिस में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध वैज्ञानिक पेरी क्यूरी से हुई। दोनों की सोच और विज्ञान के प्रति समर्पण एक जैसा था। कुछ समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया और साथ मिलकर रिसर्च शुरू की। उन्होंने एक बहुत ही साधारण और छोटी सी प्रयोगशाला में कठिन परिस्थितियों के बीच काम किया। घंटों तक भारी भारी बर्तन हिलाना, धातुओं को गर्म करना और बार बार प्रयोग करना उनकी रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। कई साल की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने रेडियोएक्टिविटी के रहस्य को समझने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इस दौरान उन्होंने दो नए तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की। पोलोनियम का नाम उन्होंने अपने जन्म देश पोलैंड के सम्मान में रखा। यह खोज उस समय विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी गई।

मैरी क्यूरी की असाधारण रिसर्च ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। साल 1903 में उन्हें पेरी क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के पाने वाली वो दुनिया की पहली महिला बनी। लेकिन उनकी सफलता यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी और रेडियम को अलग करने में सफलता हासिल की। इस महान उपलब्धि के लिए साल 1911 में उन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। आज भी मैरी क्यूरी दुनिया की एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान की दो अलग अलग शाखों पर नोबेल पुरस्कार जीता। उनके नाम पर दुनिया भर की अनेक यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और स्कॉलरशिप भी स्थापित की गई है। मैरी क्यूरी की जिंदगी में सफलता के साथ दुख भी आए। साल 1906 में एक सड़क दुर्घटना में उनके पति पेरी क्यूरी का अचानक देहांत हो गया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। लेकिन इस गहरे दुख के बाद भी उन्होंने अपनी रिसर्च नहीं छोड़ी। उन्होंने पेरी क्यूरी की जगह सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद संभाला और इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की पहली प्रोफेसर बनी। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब हजारों सैनिक घायल हो रहे थे, तब मैरी क्यूरी ने मोबाइल एक्सरे यूनिट्स तैयार करवाई। ये गाड़ियां युद्ध के मैदान तक पहुंचती थी और तुरंत जांच करने में मदद करती थी। इस कारण अनेक सैनिकों की जान बच सकी। उन्होंने सिर्फ लेबोरेटरी ही नहीं बल्कि समाज की सेवा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्रोताओं, मेरी क्यूरी की रिसर्च का प्रभाव आज भी हमें हर रोज देखने को मिलता है। कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले रेडिएशन थेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन, मेडिकल डायग्नोसिस, एक्सरे इमेजिंग और कई अन्य रिसर्च उनके काम की देन है। आज डॉक्टर्स शरीर के अंदर की बीमारियों को पता लगाने और गंभीर रोगों का इलाज करने के लिए जिन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बुनियादी मैरी क्यूरी की खोजों से ही मजबूत हुई है। उस समय रेडियोएक्टिव पदार्थों के नुकसान की पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बिना किसी सुरक्षा के उनके साथ काम करती रही। लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी।

श्रोताओं, मैरी क्यूरी का लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। आखिरकार 4 जुलाई 1934 को एब्लास्टिक एनीमिया नामक गंभीर रोग के कारण मैरी क्यूरी का देहांत हो गया, लेकिन उनके योगदान कभी समाप्त नहीं हुए। आज भी जब विज्ञान, चिकित्सा या मानव कल्याण की बात होती है, तब मैरी क्यूरी का नाम बड़े गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि गरीबी, कठिनाइयाँ, समाज की बंदिशें या जीवन के दुख किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते। अगर उसके अंदर सीखने की इच्छा, कठिन परिश्रम करने का जज्बा और अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण हो। मैरी क्यूरी सिर्फ एक महान साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि साहस, त्याग और दृढ़ संकल्प की जीती जागती मिसाल है। उनकी कहानी हर युवा को ये प्रेरणा देती है कि सच्ची लगन और मेहनत से की गई एक खोज पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकती है।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम में मैरी क्यूरी के बारे में, साथ ही हमने सुनी कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
5: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
6: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
4: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट पर करार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादू गावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर 30-47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए गए समाचार प्रभात। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम को। सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से लेके जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से रिले किए गए नॉर्थ ईस्ट न्यूज। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम सुरों की रंगोली। आज के सुरों की रंगोली कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मशहूर गायक मनोहर उदास के कुछ सदाबहार गाने।

श्रोताओं, शुरू की रंगोली कार्यक्रम के तहत आप आनंद ले रहे थे मशहूर गायक मनहर उदास के कुछ सदाबहार गानों का। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पुवार आंचलिक बातरी।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए गए पुआर आंचलिक बातरी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

श्रोताओं, आइए आरंभ करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे खेलमा कार्यक्रम के तहत, खेलमा भक्ति गीत जॉन इलियजर हुंगलो और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, जॉन एलियाजर होंगलो और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही खेलमा गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं रांगखोल कार्यक्रम। सुनते हैं रांगखोल पारंपरिक गीत एल्विन रम ललरेम थांग रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ में।

इसी पारंपरिक गीत के साथ ही रंगोल गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए प्रारंभ करते हैं जयंतिया कार्यक्रम। सुनते हैं जयंतिया भक्ति गीत आर्तुबम ब्याम और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अर्थवम ब्याम और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही जयंतिया गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए प्रारंभ करते हैं ब्याते कार्यक्रम, सुनते हैं ब्याते आधुनिक गीत रुआलथंग रेमा नामपुई और उनके साथियों की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, इसी आधुनिक गीत के साथ ही ब्याति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही समाप्त होता है स्थानीय भाषाओं की कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का। इसी के साथ मैं यानी मीना लेती हूँ आप सबसे इजाजत। नमस्कार।
1: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। और इन दोनों गायकों ने न केवल मुकेश के बहुत सारे गाने गाए, बल्कि ये भी बताया कि मुकेश की गायकी की क्या खासियत थी और मुकेश उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। सज्जन

0: झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
1: आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग, पार्श्व गायक मुकेश की विनम्र याद।

0: अच्छा ये बताइए, अपने परिवार वालों में किसके लिए कौन सा गाना गाते हैं आप लोग?
1: नहीं पर्टिकुलरली ऐसा तो घर के अंदर वो बोलते हैं ना कि जो बाहर अपना प्रोफेशन होता है, घर के अंदर इंसान की आखिर पूरी पर्सनैलिटी अलग
0: अलग
1: होती
0: होती है
1: है तो
0: बिल्कुल
1: वैसा तो होता नहीं है।
0: हाँ
1: कभी घर के अंदर तो उल्टा शायद अगर गा रहे हो तो घर वाले बोलते होंगे कि भाई अभी यहाँ
0: आपके साथ भी ऐसा होता है?
2: मेरे साथ तो क्या है कि अगर रिहर्सल है और शाम को शो है तो मुझे पता है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ, रात को ही घर वापस आऊंगा, तो वाइफ का थोड़ा सा मूड उखड़ा रहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गा के चला आता हूँ, उसके बाद ना कोई फोन आता है ना कोई मैसेज आता है घर में शांति बनी रहती है
0: ये देखो गाना जो है एक जरिया बन गया खुश करने का तो ये गाना सुनाइए फिर।

फिर से कहो कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब।

0: मतलब ये गाना काम कर जाता है,
1: कभी कभी कर
0: जाता है। अच्छा ये बताइए, रेडियो का आप लोगों की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रहा है बचपन से अब तक? विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल के बजाय कल्चर कहना ज्यादा पसंद करता हूँ।
2: हम तो मैं समझता हूँ इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब एक किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होके 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबके रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साहनी साहब को, तो वो दौर भी देखा। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमें सुनता था।
0: क्या बात
2: तो
0: है।
2: आपको इतना हमने सुना है, इन दिनों आप जो काम कर रहे हैं, तो ये चीजें संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी जिंदगी में, इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे जिंदगी।
0: क्या बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी,
1: बहुत बहुत। और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहाँ पे गांव में पला बड़ा हूँ, वहाँ पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में।
0: हाँ।
1: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबूजी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच में रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके पंखे हारते रहता था और सुनता रहता था।
0: वाह वाह,
1: वो दौर लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब अब वापस नहीं आया।
2: हाँ, सच सच बात, सच
1: बहुत मजा आता
0: तब
1: था उस टाइम पे,
0: में एक सादगी थी और सब लोगों का साथ था,
1: सच में सच
2: हाँ,
1: में।
2: और बहुत खुशी थी।
0: हाँ,
1: बहुत खुशी।
2: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आशाएं बहुत सारी हैं,
0: हाँ,
2: लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकेंगे।
0: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
2: अभी हमारी चॉइस की बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद हैं। ये ऐसी ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा, अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना
0: दे, बड़ा मुश्किल हो जाता है
2: कौन सा मेरे को कौन सा पसंद है।
0: बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन।
2: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं। और
0: एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने तो।
2: हाँ क्या बात है, आप क्या फ्लूट उसमें बजाइए,
0: क्या बात है।

0: एसएन त्रिपाठी का संगीत है, और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा हुआ फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया है, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए,
1: इन कदमों पे
2: किसका जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
0: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है, है ना? आपको याद था?
1: नहीं।
0: क्या प्यारा गाना याद दिलाया, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे हैं?
1: चंदन सावधान ने
0: आप गाओ।

0: क्या बात, क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
1: गोदान राजकुमार।
0: हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है।
1: वाह, सही बात,
0: जो भोजपुरी शैली का गाना
1: शैली
0: है।
1: के गाना
0: इल्तिजा।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़कर एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना। जैसे मुझे कहते हैं कल्लू कबाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया,
1: लेकिन
0: मैं हूं ठुमरी तू है ख्याल, मतलब ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र किशन क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
2: मुझे कहते हैं, मुझे कहते

0: क्या बात है, मुकेश को याद करते हुए ये जो शुरुआत में हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता,
1: नहीं
0: एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है,
1: हाँ
0: दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी
1: हाँ
0: उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में
1: हाँ
0: बाकायदा आते हैं।
1: है
0: लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है, मजरू साहब का ये गाना।
1: तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे

0: गोविंद ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था, और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: उनके थ्रू ही मैं गया था, उनके साथ आर्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आर्ट के आर्ट शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से 2 घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पे ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
0: जी।
2: और आजकल के सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में सब शायद हो सकता है उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
0: जी, और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहराव
0: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
2: नहीं,
0: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
0: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
2: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तन्हाई में यहाँ लौट गया था। मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
0: हाँ, ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा,
0: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।

0: क्या बात है देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं
0: क्या बात है सकते वाह वाह वाह ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है, बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सबको सुनती है
0: तो आपको जबरदस्ती
1: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना
0: हाँ।
1: वो नहीं सुनती, वो इसलिए शोज में भी नहीं आती, बोलती तुम वही तो गाओगे, कुछ नया तो गाओगे नहीं इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का, एकदम वो सुनेगी क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा
1: संगीत सुनो सुनो सुनो
0: बिठा के
1: सुनना पड़ता है, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है
0: ये मजेदार है। अच्छा कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून जो बनी हुई ट्यून है उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं, हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हुए और इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेज हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए, इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: मैं समझता हूँ कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम वो लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूँ तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं, शो खत्म हो गया पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो
0: क्या मजेदार बात है। मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिंस आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी।
2: तो शायद ये नए लोगों ने इस वजह से यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया होगा भाई, थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को।

0: और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय।
1: गोविंद, आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
2: मैं तो इसके खिलाफ हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है, या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर, कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल की जो जनरेशन आजकल जो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं
1: बिल्कुल
2: और वो गा भी रहे हैं। मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, वो ये सब गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के
1: बिल्कुल
2: कि
1: बिल्कुल।
2: भाई
1: आज
2: चलो अभी
1: इतने
2: वो चल
1: बरस
2: रहे हैं।
1: बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं
2: हाँ,
1: जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा
2: बचा
1: है,
2: के
1: और
2: रखा
1: दिन
2: है।
1: रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
2: करेक्ट
1: हाँ बिल्कुल, और
2: करेक्ट
1: शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं, और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते
2: बहुत
1: हैं।
2: अच्छा लगता
1: बिल्कुल
2: है।
1: बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे
2: यस
1: हैं,
2: यस यस
1: है ना?
2: यस यस
1: ये
2: देखा
1: जो है
2: मैंने।
1: कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं,
2: एग्जैक्टली
1: किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
2: एग्जैक्टली सही बात है।
1: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
0: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन ये गाना हुआ, या आ, आ, दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि ये गानों का फील इतना जबरदस्त है,
1: बिल्कुल
0: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है। तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो,
1: जी जी
0: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो जाने कहाँ गए वो दिन।

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद, आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल।
1: क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं। अब
0: एग्जैक्टली
1: एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
0: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर
1: जी
0: मुकेश जी नहीं होते तो।
1: जी
0: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज्यादा है,
1: आम जनता के बहुत चहेते
0: बहुत
1: गायक।
0: चहीते गायक थे। यस यस
1: गोविंद आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, ये बात तो सही है मुख्तार भाई से, मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं, और मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए, डुएट्स सब ज्यादा हिट्स उनके पास ही हैं। और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो, गुजरात में तो हर घर में, हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो
0: बच्चा
1: गुजरात के,
0: गुजरात
1: है
0: के दामाद थे
1: ना।
0: यस,
1: उनकी जो
0: बच्चे।
1: पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है
0: हाँ
1: ना, उनसे उनकी शादी हुई थी। और
0: यस
1: ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी।
0: यस बताइए
1: उन्होंने घर
0: बताइए,
1: वालों की मर्जी के खिलाफ ये
0: खिलाफ
1: शादी की
0: जाए
1: थी
0: के।
1: सरल वेन के
0: हाँ
1: साथ।
0: जी जी जी जी देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे गुजराती
1: गुजराती गाने भी गाए
0: गुजराती
1: उन्होंने
0: गाने भी
1: और
0: बहुत
1: आज
0: सारे गाए।
1: इनफेक्ट जो 22 जुलाई है, जिस दिन जो उनका जन्मदिन है, वही उनकी शादी का दिन
0: हाँ
1: दिन है,
0: बिल्कुल,
1: क्या
0: ये
1: बात
0: भी
1: है।
0: बहुत
1: दिलचस्प बात है।
0: और शायद पर्पजली उन्होंने उसी दिन किया होगा,
1: हाँ मेरा ख्याल
0: फोर्टी
1: है शायद
0: सिक्स में,
1: कितनी
0: फोर्टी सिक्स में
1: हाँ, और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
0: 23 साल।
1: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
0: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के
1: तो फिर हम
0: गुजराती।
1: कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो
0: एक
1: गाएंगे।
0: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे,

0: में क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में। बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है
1: ओ
0: ना, वहां
1: बिल्कुल,
0: शोज भी उन्होंने काफी सारे
1: काफी
0: किए।
1: सारे किए।
0: कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कंपटीशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान
1: एग्जैक्टली
0: गायकों की अपनी अपनी जगह है।
1: एग्जैक्टली,
0: बिल्कुल
1: यस।
0: बिल्कुल। अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
1: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता
0: अरे बाबा क्या बात है,
1: हूँ।
0: जरूर।
1: मारा भोड़ा दिल नो

0: वाह वाह वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया। गुजराती गाने हमने सुने। ये जो आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म कर्म हो, कभी कभी हो, ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके, उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए।
1: जैसे मुक्ति।
0: हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: आर डी बर्मन जी,
0: आर डी बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना।
1: हाँ, 16 गाने हैं।
0: हाँ, एक फिर कब मिलोगी भी है।
1: हाँ, लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे 5 ही गाने हैं।
0: अच्छा,
1: जो 16 गाने कुल गाए उनके साथ वैसे उन्होंने।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: लेकिन
0: मुक्ति, सुहानी चांदनी रातें।
2: हाँ।

0: बाद है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और जी। क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है,
1: गैप आ गया, हाँ।
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में,
1: साथी
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है,
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधरा, आईना हूँ मैं तेरा,

0: क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ वो जरूरी है बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है। कई दशक के बाद साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केर्सी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर
1: सावर।

0: और अब बारिश का दूसरा गाना। उषा खन्ना जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहने वाला
0: इशारों में बात हो रही है। सबक
1: बर

0: जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है, हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो,
1: आना जाना मुश्किल हो जाए,
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ ऐसा कई मरतब ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना, या
0: हाँ, हाँ।
1: कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है, तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है। एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा,
1: सीधे स्टेज पर जाना पड़ा है।
0: तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकंफर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है, तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था। ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चींचिया।
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए।
0: अरे बाप रे बाप,
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है, क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: आप कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होके जाना है।
0: बिल्कुल,
2: हजार लोग सुनने के लिए आए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मरतबा होता है,
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं।
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते, कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
0: मतलब मूड है कि नहीं?
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं, शायद देखने के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे।
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ। गोविंद, आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ कुछ कपड़े लेने के लिए, तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो? अरे वाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले ले फोटो, ठीक कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
2: यहाँ पे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ? फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है, फैंस
2: किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: जो संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आज के इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर, खासतौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज है, अगर ये पुराने गाने आपने ढाई तीन घंटे सुन लिए, तो अगले एक साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
0: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुंह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूजिक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली जिंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो ढाई तीन घंटे का, चार घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय, मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये तीन चार घंटे मम उस एरा में चले जाते हैं, वे एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम खत्म हो जाती है। वो तीन घंटे का रिलैक्स हमको अगले एक हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली।
0: अच्छा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
1: हाँ, कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में डेफिनेटली, ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या जबरदस्ती, या शायद वो चीज़ को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर ला के बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहाँ से मैं अपना ख़त्म करके जाए, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली इंजॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज़ के साथ है, अगर वो दिल से इसको इंजॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए? लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं?
2: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा, वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देखते
0: सबसे
2: हैं।
0: पहले तो अपना मोबाइल म्यूट रखें,
1: मोबाइल म्यूट रखना
2: वो तो
1: चाहिए
2: जरूरी है,
1: डेफिनेटली।
2: वो तो जरूरी
1: और
2: है।
1: अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको इतनी पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए।
0: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
1: एग्जैक्टली।
0: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत के लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
1: जहाँ तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारे पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन अब पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ है, जिस
0: हाँ
1: गली में तेरा घर ना हो,
2: बात है।
1: बालमा हुआ,

0: अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूं जैसा किसी ने नहीं फंसाया होगा।
1: ऑलरेडी आप कर चुके हो वैसे।
2: कब से सोच रहा हूं मैं ये चीज़ें।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
1: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना।
0: हाँ।

0: गोविंद।
1: हाँ एच है। हाँ हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के
0: जी
1: जिसके बाद

0: है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।
0: रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया, रास्ते का पत्थर।
1: फिर से राह हो गया, ये तो गजब हो गया।

0: क्या प्यारी बात है। इसी स्टूडियो
1: वंडरफुल।
0: में जहां हम बात कर रहे हैं, योगेश जी आए थे और
1: हाँ
0: उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे
1: अच्छा
0: सुनाई थी।
1: वाह
0: बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है। और
1: जी
0: देखिए, मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है, ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी
1: हाँ
0: हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि
1: जी
0: उनकी अंताक्षरी भी खेलें अपने घरों की महफिलों में,
1: जी
0: अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
1: जीना है मरना है कल के।

रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई आपका भी, विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मजा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का और आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा और गाया जाएगा।
0: बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र। इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

अशोक भोसले के स्वर में जयशंकर प्रसाद की ये रचना संगीत जयदेव कथा। रंग तरंग कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है महादेवी वर्मा की रचना स्वर छाया गांगुली का।

0: डैडी फिल्म का ये गीत था। तलत अजीज की आवाज थी, सूरज सनीम के बोल राजेश रोशन की तर्ज थी। विविध भारती रंग तरंग, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुलजार के बोल थे। वादा एल्बम से ये गीत था, संगीत उस्ताद अमजद अली खान साहब का था। अब भूपिंदर की आवाज गूंज रही है गुलजार के बोल।

0: एल्बम का नाम था मैं और मेरा साया, डॉक्टर भूपेन हजारिका की आवाज थी। विविध भारती, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
0: और अब जाने माने गायक सोनू निगम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पेश कर रहे हैं ये गाना।

पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात के मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज सोनू निगम को हम दे रहे हैं जन्मदिन की बधाइयां। तो कुछ ऐसे गाने जो सोनू निगम के बड़े सुहाने से गाने हैं जो हमारे सफर को बनाएंगे सुनहरा।

0: और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉर्डर फिल्म का ये गीत जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक की तर्ज थी, रूप कुमार राठौड़, सोनू निगम और साथियों की आवाजें थीं। आज है सोनू निगम का जन्मदिन और विविध भारती पर यादों की महफिल कार्यक्रम में उनके गाने हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सु आयो विनायक, करवे न सीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
0: पर्दे इस फिल्म का गाना सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन। आनंद बख्शी, नदीम श्रवण।

परदेश की बात अब थ्री इडियट्स फिल्म का गाना सुनो निगम शान और स्वानंद किरकिरे। गीत स्वानंद किरकिरे, संगीत शांतनु मोहित्रा। दिन के 12:39 और विविध भारती पर ऑल इज वेल।

जाके बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी पर जाके बोल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
4: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आए हाय,
0: सुनो निगम और अनुराधा पौडवाल, फिल्म का नाम है तुम बिन,

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: दिल चाहता है फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ये।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

0: किस तरह।
1: और जब शाम की बात चली तो बहुत सारे श्रोताओं की बातें आई हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो हर शाम दिल लुभाने वाली होती है, लेकिन पुरी की जो शाम है, पुरी के समुद्र तट की शाम, सूर्यास्त का नारंगी रंग बहुत ही मनमोह लेता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे हमारे शहर उज्जैन की शाम पसंद है, क्योंकि 36 साल की सेवा के बाद मुझे अपने शहर वापस लौटने का मौका मिला है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती हैं कि कोच्ची की शाम पसंद है, हमारे छत से हम सूर्यास्त देख सकते थे, सूरज समुद्र के नीचे जा रहा था, धीरे धीरे खूबसूरत प्रकाश फीका हो रहा था। इसके अलावा लेकिन फिल्म का ये गाना है, इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं कि गुलजार के ये बोल, सुरेश वाडकर की आवाज, हृदयनाथ मंगेशकर का ये संगीत है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई हमारे लखनऊ की शाम का कोई जवाब नहीं है। एक और श्रोता है जो ये लिखती है कि जिसके साथ शाम होती है वो जब भी दूर होकर भी दूर जाकर भी दूर नहीं होता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे कक्षा 8वीं की शाम बहुत अच्छी लगती थी, जब मैं एनसीसी के कैंप में भोपाल गया था और कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे। इसके अलावा एक श्रोता की बात यह है कि उन्हें सुबह और शाम दोनों ही अपने शहर की अच्छी लगती हैं, यानी उनके शहर की ही सुबह और उनके शहर की ही शाम उन्हें अच्छी लगती है, घर पर अच्छा लगता है। एक श्रोता और हैं जिनका कहना है कि समंदर के किनारे जो शाम बीते, डूबता सूरज क्षितिज को सुनहरा करता है, वो देखना बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो हर शाम मुझे अधूरी सी लगती है। और इसके अलावा लखनऊ की शाम भूलने वाली नहीं है, ये बात भी एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं की बातों के बीच में एक बात ये भी है कि एक श्रोता अपने दफ्तर से कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए, जो कि आज की इस इबारत का हिस्सा था जिसे हमने गानों के बोलों के इशारों से सजाया था, और ये जो गाना है ये कहता है कि थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी, यानी जिंदगी की उदासी को और आंखों के भीग जाने के एहसास को ये गाना बयां करता है। पिछली बार हाल ही में किस बात पर आपकी आंखें भीग गई थी, ये बात बताइएगा। और साथ में ये भी कि इस गाने में ये जो नाजुक आवाज है, दिल में उतर जाने वाली आवाज, ये किस गायिका की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि पिछली बार तब बहुत रोना आया था जब मैं भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आर्मी की भर्ती की परीक्षा देने गया था और केवल 20 सेकंड से मैं रह गया था। एक और श्रोता है जो कहती है कि शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जुगल हंस राज वाली फिल्म मासूम और गायिका आरती मुखर्जी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्हें आरती मुखर्जी के साथ कोलकाता में चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ था, ये उनके लिए बहुत ही यादगार लम्हा है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि कुछ लोग जो अब साथ नहीं हैं उनकी याद में आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि मैं जब भी फूलों का तारों का गीत सुनती हूं तो अपने भाई को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। बचपन की याद दिलाने वाली फेसबुक पोस्ट देखकर आंखें नम हो जाती हैं कि कितनी निस्वार्थ दोस्ती थी, आपस में खेलना, झगड़ना, फिर सुलह कर लेना। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका ये कहना है कि जिंदगी कितनी अजीब है, सब कुछ इतना मुकम्मल लगता है कि इंसान वक्त को वहीं रोक देना चाहता है, लेकिन शाम ढलती है वो इंसान विदा हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। एक और श्रोता है कहते हैं पूछिए आज हम आ गए मैदान में। बिल्कुल जी, अब तो कठिन से कठिन सवाल पूछेंगे, आइए मैदान में। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने 1983 में आई थी फिल्म मासूम ये लिखा है। एक और श्रोता का कहना है कि माँ का साथ कुछ साल पहले छूटा, दुनिया में वीरानी छा गई, एक खालीपन है। शाम की चाय अब भी पीती हूँ पर माँ के साथ शाम की चाय की बात कुछ और थी। अब घर का वो कमरा जहाँ से माँ की रौनकें थीं, दर्द भरा सन्नाटा पसरा रहता है। किसी का साथ जब छूट जाता है तो कितना बदल जाता है जीवन। एक और श्रोता लिखते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा थी तो मन में ख्याल आया कि सबसे पहले गुरु तो माँ पापा होते हैं, बस सोचते सोचते आंखें भर आई। तमाम श्रोताओं के इस तरह के कमेंट कुछ जज्बाती कर देने वाले, कुछ अपने दिल की बात कहने वाले, शुक्रिया आप सभी का। और पूरी इबारत की एक तरह से डोर पकड़ के जो अगला गाना हम आज के हार में मोती की तरह पिरो रहे हैं वो मुकेश की आवाज वाला ये गाना है। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बताइएगा।

एक श्रोता लिखते हैं कि शाम से शुरू हुई सुरमई संगीत की यात्रा, नैनों ने पानी बरसाया, दिल तोड़ दिया और दिल को समझ लिया। ये आपका अंदाज है, शुक्रिया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहेली फिल्म का गाना है और संगीतकार इंदिवर जी हैं। भाई संगीतकार नहीं, गीतकार इंदिवर जी हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और सहेली 1965 में आई थी। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि उनकी लिस्ट में ये गाना शामिल था। एक श्रोता लिखते हैं कि कल रफी साहब की याद का दिन है और कम से कम 2 घंटों का कार्यक्रम होना चाहिए और आप इसे प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया, रफी साहब की याद में कार्यक्रम जरूर होगा और क्यों ना आज ही से हम रफी साहब के लिए अपने दिल के जज्बात का इजहार करना इसलिए शुरू कर दें क्योंकि अभी कार्यक्रम का जो अगला गाना है वो रफी साहब की आवाज वाला ही गाना आ रहा है। एक श्रोता लिखती है कि प्यार कभी मरता नहीं, वो याद में बदल जाता है। याद से एक मूक ताकत हमें जीने को मजबूर करती है। कितना कुछ है दुनिया में भूलने को और कितना कुछ है दुनिया में याद करने को। इसके अलावा एक और श्रोता है, कहते हैं कि मेरी पत्नी ही मेरी सच्ची दोस्त है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अधूरी कहानी के नायक और नायिका के लिए आंखें सजल होती हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है लिखते हैं कि दिल नाजुक है और उसका भावुक होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। एक और श्रोता है लिखती हैं कि कुछ गाने बीतते नहीं हैं, दिल में एक टीस पैदा करते हैं और आंखें भीग जाती हैं। आरती मुखर्जी वाला गाना उन्हें कुछ इसी तरह का गाना लगता है। और अब मोहम्मद रफी की आवाज आ रही है, साहिर लुधियानवी का लिखा एक फलसफा। कल मोहम्मद रफी की याद का दिन, 31 जुलाई का वो दिन जब रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, क्यों ना आज से ही रफी साहब के प्रति अपने जज्बात का इजहार करें और आज के इस कार्यक्रम में आप बताएं कि कितना प्यार करते हैं आप रफी साहब की आवाज से, कितना मायने रखते हैं रफी साहब आपके लिए।

एकशुता लिखते हैं, बचपन में किसी आवाज से आरंभ हुई तो वो मरहूम सुरों के साधक मोहम्मद रफी ही थे जो अब तक दिल में बसे हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मेरा पसंदीदा गाना है और मैं बरबस गुनगुनाता हूँ। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि चित्रलेखा फिल्म का ये गीत साहिर लुधियानवी, रोशन, प्रदीप कुमार, केदार शर्मा, क्या बात है, पूरे डिटेल्स आपने लिख लिए हैं। राग यमन पर आधारित गाना, सितार, सरोद और बांसुरी का बेहतरीन इस्तेमाल, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रफी साहब की आवाज रूह को छू लेने वाली आवाज है। और इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर गीत है, मन रे तू काहे ना धीर धरे, बचपन से सुनती आ रही हूं, कितना सुकून है इन बोलों में। एक और श्रोता, मेरे लखनऊ के घर में जिसमें मैं खेली पढ़ी, सबके सबके शादी ब्याह हुए, भाई बहन का प्यार, सब यादें रह गईं, वो घर बेच दिया गया, भाई लोग फ्लैट में चले गए, बहुत रोना आ रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर बोल, चित्रलेखा फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता का कहना है कि रफी साहब की आवाज का तिलस्म कभी खत्म नहीं हुआ, इस तिलस्म का असर और ज्यादा गाढ़ा होता चला जा रहा है। एक और श्रोता का कमेंट है, सुमधुर गानों की बौछार जैसे बारिश की पहली बूंदें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि मुकेश साहब पर आधारित दोनों कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, दो दो बार सुना पर प्यास नहीं बुझी। इस तरह के कमेंट्स हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वो गाना सुनवा रहे हैं जो इबारत में शामिल था लेकिन मुखड़े के रूप में नहीं, बल्कि गाने की बीच की पंक्तियों को शामिल किया था। फिर भी फिल्म संगीत के दीवाने हमारे श्रोता, विविध भारती परिवार के हमारे सदस्य, आप सभी ने इस गाने को पहचान लिया था। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, बताइएगा फिल्म का नाम और ये भी कि इस फिल्म का कौन सा गाना आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा, या कौन से गाने हैं जो सबसे ज्यादा पसंदीदा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बताइए कि आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके होंठों पर सजा है।

0: भाई ये गाना कितने जल्दी खत्म हो गया ऐसा लगता है। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मेरे होंठों पर एक ही गीत जहन में आ रहा है, न फनकार कोई तुझसा तेरे बाद आया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संगीत के प्रति मेरे लगाव की शुरुआत मोहम्मद रफी से हुई है। मोहम्मद रफी सिर्फ गायक नहीं बल्कि भारतीय संगीत की वो रूह हैं जिसने करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाया। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उपकार का जो गाना है, सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं और आज सुबह से बारिश का लुत्फ हम ले रहे हैं। और एक श्रोता का कहना है कि लता जी का तार सप्तक स्वर अंतरे में बहुत भाता है इस गाने में। गुलशन बाबरा का लिखा गीत, कल्याण जानी जी का संगीत, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे देश की धरती टाइमलेस गाना है और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना यही है। और उसके अलावा कस्मे वादे प्यार वफा, एक और श्रोता है कहते हैं कि आज से सावन शुरू हो गया है, कई दिनों से बहुत उमस वाली गर्मी थी और इस समय तेज बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक श्रोता कहती हैं कि किसी अपने के लिए की गई वो पवित्र दुआ है जहां खुद को पीछे छोड़कर केवल सामने वाले के जीवन में कोई उजाला और मुस्कान देखना चाहता है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि शायद इबारत देखने के बाद यही गीत पूरा हमारे जहन में चल रहा था और इस गाने का इंतजार वो कर रही थी। इंतजार एक और कार्यक्रम का कीजिएगा जिसकी सूचना आप देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आए हाय
0: भाई, विविध भारती पर सुरीला सफर चल रहा है और हमारे श्रोता किस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज सोनू निगम का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देना चाहते हैं। बिल्कुल दीजिए भाई, और हमने तो इससे पहले वाले यादों की महफिल वाले कार्यक्रम में बाकायदा उन्हें बधाइयां दी हैं और फनकार, आज के फनकार कार्यक्रम का जिक्र भी उन्होंने किया है। और बहुत सारे श्रोता मोहम्मद रफी साहब के बारे में अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जो कह रही है कि बिल्कुल सुबह से एक गाना जहन पर चढ़ा हुआ है, वो है स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि सुबह से हमारे जहन पर छाया हुआ है वो गाना चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि टेलीपैथी हो गई हर खुशी हो वहां हमारे जबान पर सुबह से चढ़ा हुआ है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये दिल दीवाना है ये हमारे जहन पर चढ़ा हुआ है। एक श्रोता के जहन पर चढ़ा हुआ है मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। और इस तरह से सभी अपने अपने गाने बता रहे हैं और आज की इबारत का अगला गाना ये, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आज की शाम सुनहरी बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं।

इस गाने को सुनकर एक आह निकल जाती है। आह फिल्म का गाना जिसको सुनकर आह निकल जाती है। एक श्रोता कहते हैं कि भाई कजिन को पढ़ाना है, शाम को मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शाम का आनंद लेंगे। एक और श्रोता का कहना है कि शाम की तन्हाई को और गहरा बनाने के लिए समुन्दर का किनारा ही बढ़िया होता है। और शैलेंद्र के इस गाने पर एक श्रोता जो है बहुत भावुक हो रहे हैं। एक और श्रोता है कहते हैं कि मैंने 6 गाने आज अंदाजा लगाया था, इन 6 गानों का गेस किए थे, 6 गाने शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 गानों की लिस्ट में ये 3रा गाना है जो शामिल हुआ है। एक और श्रोता है जिनके शहर में बारिश की सूचना है, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाने वाली। और जब बारिश होती है और जब कहीं जाने को नहीं होता तो किचन में एक बहुत हल्की चीज बनती है जो तेल के ऊपर तैर जाती है। वो हल्की चीज कौन सी है भाई, जो बारिश के मौसम में हमें जरूर खाना पसंद होता है? जरा बताइएगा, वो हल्की चीजें जो हैं जीवन में बनी रहें, उनकी महक बनी रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और सुबह से ही हम सावन के गाने गुनगुना रहे हैं। एक और श्रोता है जो जबलपुर में, और कहते हैं कि आज हमारे शहर में मोहम्मद रफी साहब की याद में एक कार्यक्रम है और आज शाम को वो वहां जाने वाले हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैंने जैसे ही सोचा मेरी मम्मी का ये फेवरेट गाना बजने लगा और मैं साथ में गुनगुनाने लगी। आज शाम को सभी दोस्त मिल रहे हैं और तालाब में बोटिंग करने जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है और बाकायदा बोटिंग का मौसम है। देखिए भाई, कितने सारे श्रोताओं के जो शाम के प्लान्स हैं वो हमने उजागर कर दिए आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो बताइएगा कि आपका आज की शाम का क्या प्लान है। तब तक ये गाना जो जिंदगी दुनिया और रिश्तों की हकीकत को उजागर करता है। बताइएगा ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे आज आपकी बात नहीं हो रही है।

बहुत श्रोताओं के कमेंट तना दन चले आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि उदासी गहरी होती है तो दोस्तों से बात करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बस उस दिन एक्टिव होता है जब किसी का जन्मदिन हो। मैंने ऐसे ही एक दिन कहा कि सब कहाँ रहते हो, तो बड़ा ही रूखा सा जवाब आया कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आप मेरे फेवरेट एंकर बन गए हैं। रफी साहब के बारे में क्या कहूं, वो मेरे फेवरेट थे, फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। बहुत ही सही उन्होंने कहा कि अगर एक भी दिन रफी साहब की आवाज न सुने तो बहुत खाली सा लगता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है सितारा फिल्म का। एक और श्रोता है कहते हैं कि दोस्त होने का क्या फायदा, जिससे बात ना हो। दोस्त तो वो होता है जो झगड़ा करने के बाद आकर बोले कि भाई क्या हाल चाल है, चलो बड़े तालाब में घूम कर आते हैं। क्या बात है, प्यारी बात कही है। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि सितारा फिल्म का ये गाना बहुत कम सुनाई देता है, आज आपने सुनवाया, शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज आपने वो बातें छोड़ दी हैं जो दोस्ती की अनगिनत यादें लेकर आती हैं और अंत में आंखें भिगो देती हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आपने जो बहुत ही हल्की सी चीज का जिक्र किया है वो पकौड़ी है जो कढ़ाई में तेल के ऊपर तैर जाती है। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिनका आज पकौड़ी खाने का प्लान है, तो जरा ये बताइए बहुत सारी महिलाएं के भाई पकौड़ी आप ही बनाती हैं या अपने पति से भी बनवाती हैं? किन किन घरों में पति पकौड़ी बनाते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है? और अब वो गाना आ रहा है जो उदास कर देने वाला है। मुकेश की आवाज में उदास गाने आपको पसंद होते हैं या फिर रोमांटिक गाने, बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, ये भी बताइएगा।

कार्यक्रम के तकरीबन आखिरी दौर में हम आ पहुंचे हैं। हिमालय की गोद में फिल्म का ये गाना बजा। बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि कढ़ी बनने से पहले ही सारे घर वाले पकौड़े खा लेते हैं और मैं कढ़ी कैंसिल कर देती हूं। आपके घर में भी क्या ऐसा होता है? एक और श्रोता लिखते हैं, बनारस और बारिश पकौड़े का सवाल ही नहीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुकेश की दर्द भरी आवाज उन्हें ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बरसात में पकौड़ी मैं बनाती हूं, मेरे पति चाय भी नहीं बनाते तो पकौड़ी क्या खाक बनाएंगे। अरे रे रे रे, ये तो बड़ी बुरी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े कढ़ाई में तो हल्के होते हैं लेकिन खाने के बाद सेहत के लिए भारी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ चीजें तो हम अपनी श्रीमती जी से ही बनवाते हैं क्योंकि उनके हाथ की स्वादिष्ट होती है, तैयारी भले मुझे करनी पड़ती है। और इसके अलावा भाई आज तो पूरा पकौड़ी पुराण शुरू हो गया है। बहुत सारी महिलाएं ये बता रही हैं कि उनके पति को पकौड़े बनाने नहीं आते। अब जरा सोचिए कि ये कितनी गलत बात है। और सीख लीजिए, आज ही की आज सीख लीजिए, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि आज ही आप सिखाएंगी। और अगला गाना आ रहा है, फिल्म का नाम तो कश्मीर की कली है पर इस गाने के गीतकार कौन है और आप कश्मीर कब गए थे और कश्मीर जाने की सुनहरी याद क्या है बताइए।

एक श्रोता लिखते हैं कि कश्मीर से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में एक गांव का नाम कश्मीर है। अभी कुछ दिन पहले वहां गए थे। ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट कश्मीर घूमने के इरादे से गूगल मैप के जरिए हिमाचल से इस कश्मीर के गांव में पहुंच गए थे। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि वो 2015 में कश्मीर गए थे और बहुत ही सुनहरी यादें हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कल्पना से भरी हुई अच्छी मसालेदार पकौड़ी विविध भारती पर सुनने को मिली। और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि जब भी कश्मीर का ख्याल आया, घर में ही कश्मीर का माहौल पाया, पत्नी के हाथों से बने चाय पकौड़े टीवी ने ही कश्मीर से रूबरू करवाया। भाई वाह, क्या कहने हैं। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर में 3 साल तक रहे हैं और वहां कुछ पढ़ाई की है, युवा उम्र की यादें, क्या बात है। एक और श्रोता है जो ये कहती हैं कि 2014 में अमरनाथ गई थी और हम वहां कश्मीर गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था। एक और श्रोता है वो कहते हैं कि भाई पकोड़े नहीं तल सकते तो क्या हुआ, प्याज आलू काटने में और छीलने में मदद तो कर सकते हैं ना, ये भी कम तो नहीं। बहुत सही बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई कश्मीर की कली बहुत शानदार, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें पकौड़े खाने से मना किया है और आप पकौड़े का नाम ले रहे हैं तो मुंह में पानी आ गया है। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े वाली कढ़ी बनती है हमारे घर में और सभी सफा चट कर जाते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं रोज अपने घर में काम करता हूं और महिलाओं का सहयोग करता हूं, खाना भी बनाता हूं, कोई व्यंजन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बना सकता। पकौड़ी क्या चीज है, आप पधारिए, पनीर के पकौड़े बनाए जाएंगे। भाई वाह, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि भाई आपकी बातों के बाद पकौड़े खाने का मेरा मन कर रहा है और वो भी भुट्टे के पकौड़े। भाई आज ना ये कार्यक्रम सुरीला सफर जो है वो गानों से ज्यादा तो पकौड़ों की बातों का सफर हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े और पति जी नहीं, वो सिर्फ जायका लेते हैं। इसके अलावा और भी श्रोताओं ने ये सब जिक्र किया है, बहुत शुक्रिया। देखिए जरा सी बात पर कितनी लंबी दास्तान हो गई और कितने सारे श्रोताओं ने कितनी सारी अपनी बातें कही। यही तो है विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम का मजा कि जिसमें आप हमारे हम सफर बनते हैं और भाई तमाम बातें होती हैं और जिंदगी के अलग अलग मुद्दों पर आप अपनी बातें शेयर करते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज ताकत का इंजेक्शन लिया, सुरीला सफर कार्यक्रम सुना, परेशानी दूर हो गई, बिस्किट चाय के साथ इस वक्त बिस्किट चाय कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूं। मेरे घर में कल भाभी जी ने पकौड़े छाने थे। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आप ये कार्यक्रम करते हैं तो मैं कभी मिस नहीं करती। एक और श्रोता है जो कहते हैं कमबख्त बारिश नहीं हो रही है, पकौड़े खाक बनाए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं गए लेकिन तस्वीरें देखकर संतोष कर लेते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में इस तरह से साथ निभाने के लिए। आप बारिश का इंतजार करें और खूब पकौड़े बनाएं, मजे से खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जिंदगी की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहें, विविध भारती के संग बने रहें। सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ आपका ये दोस्त यूनुस खान था। इजाजत, नमस्ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
4: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
5: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
3: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
6: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार

0: सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरु मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोताओ, लीजिए एक बार फिर से सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

दिल्ली का दादा फिल्म का ये गाना था। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, सहर लुधियानवी के बोल, एन दत्ता की तर्ज थी। इससे पहले का गीत जागते रहो फिल्म का था, सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र के बोल थे, आशा भोसले की आवाज थी।

मजू सुल्तानपुरी के बोल थे, प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाजों में यह भूमिका फिल्म का गाना था, संगीत वनराज भाटिया का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जुर्माना फिल्म का ये गाना।

0: सखी सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हाल चाल है आरती?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: और इस
2: बारिश
1: तरह
2: के दिनों में
1: बारिश का आनंद ले रही है?
2: बिल्कुल, बारिश में भीगते हुए आइए भीगते हुए जाइए यही आनंद है।
1: तो बारिश जो है बहुत खूबसूरत ऋतु है, पर उसका आनंद हमें सावधानी के साथ लेना पड़ता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि बारिश का मौसम आया कि पर्यटन का आनंद लेने के लिए हम सभी उमड़ पड़ते हैं।
2: ये तो है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि कुछ हमें परेशानी भी हो सकती है या कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि बारिश के जो दिन होते हैं ना थोड़े से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो थोड़ी फिसलन पड़ा वो जगह रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपके क्या अनुभव है, हमारी जो भी सखियां हैं और सखा हैं उनके क्या अनुभव है, वो कभी बारिश के दिनों में घूमने गए हैं तो उनकी क्या यादगार वो किस्सा है जो वो बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, वो
1: हमें बताएं। अपने अनुभव लिखकर भेजें तो हमें ज्यादा मजा आता है।
2: बिल्कुल।
1: कि बारिश में कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए ये तो हम सभी जानते हैं, पर अगर आप कभी घूमने गए थे और फोटो लेने कहीं बहुत दूर चले गए, लंबे चले गए, पैर फिसल गया, या फिर बहुत सावधानी के साथ आपने फोटोज ली है, जो भी अपने अनुभव है वो हमसे
2: बिल्कुल
1: साझा।
2: आपने किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां ली जिसके वजह से आपका सफर जो था वो बहुत सुहाना बन गया
1: जी,
2: तो आप ये सब हमें बताइए। और साथ ही हम क्या बात करने वाले?
1: मुझे कुछ कहना है इसके अंतर्गत, हम थूकने की बुरी आदत कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो इतनी गंदगी फैलाते हैं। अपने घर में हम बहुत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, हम अपने घर में वॉश बेसिन में जाके ही थूकते हैं, लेकिन बाहर घर से बाहर निकले कि इधर उधर थूकना शुरू हो जाता है। ये बहुत गंदी आदत है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है।
2: तो फैलती ही है। साथ ही जो बाहर के पर्यटक बाहर के देशों से आते हैं या घूमने के लिए, वो जब देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह से हम लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे हमारे जो देश का है ना वो प्रभाव गलत पड़ता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने देश का जो अपनी प्रतिष्ठा है उसको बना के रखें
1: जी। और ये बात आपने कही है ना आरती, तो जब हम ही लोग विदेशों में घूमने जाते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि वहां पर फाइन होता है।
2: हाँ, ये तो
1: वहां हम बहुत सावधानी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर अपने देश में आके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश का गौरव हमें खुद बनाए रखना है। साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम डॉक्टर बुधरी ताती के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है
2: और
1: उपयुक्त टिप्स।
2: हाँ, वो है जलने कटने पर, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना खाना बनाते समय कभी कुकर छू गया या इस तरह का तवे से हमारे हाथ जल गया या कुछ कारणों से हाथ जल गया या कट गया, तो हम उस समय क्या चिकित्सा अपना सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे
1: जी। और साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। हमारे देश में अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, पर पूरे
2: अंतर्राष्ट्रीय जो
1: पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आज मनाया जाता है। तो हम अपने सभी साथियों को मित्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं देते हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि आप भी हमारे मित्र ही हैं ना
1: जी,
2: सखा हैं,
1: हमारे साथी हैं, उनके नाम में ही सखा है सखी है, तो हमारे तो बहुत करीबी
2: है। हमारा दिवस है समझ
1: जी, हम सभी का दिवस है
2: जी। बिल्कुल।
1: और आप क्या करें?
2: बिल्कुल, एक गीत सुनते हैं ना।
1: सुन लेते हैं गीत।
3: यूं ही तुम मुझसे बात

0: तो जब दोस्ती है तो वहां पर
1: बिल्कुल
0: बात करना बहुत जरूरी होता है ना।
1: जब हम मिलते रहते हैं ना तो हमारी दोस्ती बनी रहती है, जब हम थोड़ा बहुत मिलना बंद भी कर देते हैं ना फिर भी हमारी दोस्ती बनी रहती है, क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं।
0: हाँ
1: कुछ रिश्ते होते हैं जो हम ऊपर से अपने साथ लेकर आते हैं, किस जिस घर में हम पैदा होते हैं
0: जी
1: वो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना वो हम खुद बनाते हैं।
0: वो है दोस्ती का रिश्ता।
1: बिल्कुल दोस्ती का रिश्ता है।
0: और हमारे बीच में और श्रोताओं के बीच में, सखियों के बीच में ये प्यार से रिश्ते की डोर बंधी हुई है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से की थी और इस दिवस का उद्देश्य लोगों, समाज और देश के बीच मित्रता, विश्वास और सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल। और मित्रता केवल साथ में घूमने फिरने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती है, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतियों पर रोक लगाने, सही मार्ग दिखाने और सफलता पर दिल से खुश होने का नाम है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को तो छुपाता नहीं बल्कि उन्हें दूर करने का हमें साहस देता है। वो हमारे मुंह पे बताएगा कि

0: ये कमी है, अगर कोई हमें बताएगा नहीं हमारे अंदर क्या कमी है तो हम उसे दूर कैसे करेंगे। तो वो सच्चा मित्र जो होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि ये बुरा मान जाएगा, वो सीधे बताता है कि ये तुम्हारी कमी है, इसे तुम्हें दूर करना चाहिए।
1: और जिसके लिए कमी बताई है उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो
0: बिल्कुल
1: फिर वो सच्चा मित्र नहीं होगा, है ना।
0: बिल्कुल। और क्या, क्योंकि आपकी गलतियां बताने वाला कोई मित्र आपके साथ है, ये बहुत भाग्य की बात है।
1: जी, एक साथी ने लिखा है आरती कि दोस्त शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से फारसी से हुई है, जिसे हिंदी भाषा ने इतने प्यार से अपनाया है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हिंदी में इसे मित्रता या मैत्री भी कहा जाता है। इस शब्द में एक ठहराव है, ये रिश्ता खून के रिश्तों से अलग होता है क्योंकि इसे हम खुद चुनते हैं। स्वतंत्रता दोस्ती में उम्र, जाति, धर्म या हैसियत की कोई सीमा नहीं होती है, ये पूरी तरह स्वतंत्र और शुद्ध भावना है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो कहती हैं कि दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की हर बात समझ जाए। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाए जाने की शुरुआत साल 1958 में हुई थी, और पैराग्वे के डॉक्टर थे रेमोन ऑर्टेमियो ब्राचो ने एक अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य देशों और समाजों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करना था। बाद में इस विचार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित कर दिया।
1: एक साथ ही लिखते हैं, सच्चा मित्र वह है जो हमारी मुस्कान के पीछे दर्द को भी पढ़ ले, बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा रहे। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की खुशबू कभी नहीं बदलती। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, साथ बिताए अनगिनत पल, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि दिलों में अपनापन हो तो दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: क्या
0: और
1: बात
0: हमारे एक साथी कहते हैं,
1: है।
0: सोनाली, जब जिंदगी में बहुत बुरा हो जाए, कुछ ना रहे, और उस समय दोस्त का हाथ गलबहिया कंधे पर टिके और दोस्त ये कहे, कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना, सच में
1: संबल
0: बहुत ज्यादा इससे हमें
1: मिलता है
0: बिल्कुल, तो
1: कि
0: हमें लगता है कि कोई है साथ में।
1: कोई है कि अरे मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करता
0: बस
1: है
0: ये
1: या
0: कि मैं
1: चिंता
0: हूं ना
1: क्यों
0: जो
1: करती है।
0: शब्द होते हैं,
1: जी,
0: यही बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं।
1: एक साथी कहते हैं, मुझे दोस्ती पर बहुत विश्वास है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है। ये रिश्ता विश्वास, अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम के मजबूत नींव पर टिका होता है। जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता और कठिन समय में सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। विविध भारती के द्वारा हमें आप जैसी सखियों के साथ कई सारे श्रोता मित्र भी मिले हैं। आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है। यही रिश्ता मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से हम चुनते हैं, और ये कहते हैं कि दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं।
1: एक साथी कहते हैं, दोस्ती जिंदगी का वो संगीत है जो पतझड़ में भी बहार का एहसास कराता है। ये कोई व्यापार नहीं बल्कि एक आत्मिक संबंध है। यही आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप बिना झिझक अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत
0: बहुत
1: सुंदर बात
0: बहुत बहुत
1: लिखी है।
0: अच्छी बात
1: इसी
0: कही।
1: तरह की बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी है।
0: हाँ, तो एक गीत सुने।
1: सुनते हैं।

0: तो कितना सुंदर गीत था, और
1: बहुत
0: ये
1: प्यारा
0: गाना सुन के हर किसी को अपने दोस्त की याद आई होगी।
1: बिल्कुल
0: पर जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले ही वे हमारे मित्र न हो, पर एक हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं
1: बिल्कुल
0: जिनकी बदौलत हमारी जिंदगी संवर जाती है।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: और ऐसे ही लोग होते हैं ना जो हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अपने भी जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने की
0: जी
1: और लोगों की सेवा करने की, क्योंकि वो जो सेवा के जरिए अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, वो
0: जी
1: सच में बहुत ज्यादा उनको महान हम कह सकते हैं, क्योंकि
0: यानी
1: वो
0: उनसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत
1: बिल्कुल
0: ज्यादा।
1: वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी लाइफ को अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं,
0: जी
1: समर्पित कर देते हैं।
0: जी तो आज हम याद करेंगे कहानी पद्मश्री में डॉक्टर बुधरी
1: बुधरी दाती
0: ताती को। जी
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर बुधरी ताती छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की प्रसिद्ध समाज सेविका है। बस्तर अंचल में उन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ी दीदी या बुआ के नाम से जानते हैं। बुधरी ताती का जन्म 15 सितंबर 1966 को हीरानगर गाँव में हुआ था। वे बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवार में जन्मी थी।
1: बिल्कुल। और जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण किया। बचपन से ही उनमें पढ़ने की लगन और समाज सेवा की भावना थी। सिर्फ 15 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। कितनी छोटी सी उम्र होती है जब बच्चे खेलते हैं, आपस में बात करना, अपनी सखी सहेलियों में लगे होते हैं, उस
0: जी
1: समय उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया।
0: यानी हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस उम्र
1: बिल्कुल
0: में इतनी इतनी सुलझी हुई सोच होगी।
1: बिल्कुल। और वर्ष 1981 में उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली और 1984 में वनवासी समाज के बीच सेवा कार्यों से वो जुड़ गई।
0: आगे चल के नागपुर में सामाजिक कार्य का उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और वर्ष 1986 में उन्होंने बस्तर के दुर्गम जिले और जंगल के में पैदल घूम घूम कर लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उस समय अधिकांश गांवों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना अभियान जारी रखा।
1: और डॉक्टर बुधरी दादी ने 1990 में केवल 11 बालिकाओं के साथ में छात्रावास की शुरुआत की थी, जहां आज उनके प्रयासों से अनेक वनवासी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने परिवारों को समझाया कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। उनके छात्रावास की कई छात्राएं आज शिक्षिका, नर्स और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
0: और डॉक्टर बुधरी ताती ने मां शंखिनी महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।
1: और इसके अलावा

0: वो हमेशा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। और डॉक्टर बुधरी ताती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद धन या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी हजारों लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन की नई रोशनी ला सकता है। लगभग 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है और हमेशा इन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाया है।
0: अब एक
1: तो
0: संदेश
1: ये,
0: सुनते
1: हाँ बिल्कुल, संगीत सुन।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
1: जी
3: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
0: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है। वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आरती
1: रूठ नहीं है। बस मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे, इसलिए
0: मुझे
1: नहीं
0: ऐसा
1: बोल
0: लगा रूठ
1: रहे थे। रूठे नहीं है, और
0: गई।
1: क्योंकि बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि
0: हाँ,
1: चलो इतनी जो बूंदे पड़ेंगी ना चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे, सब बहुत अच्छा लगेगा।
0: वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम रिमझिम बारिश चाहिए।
1: तेज नहीं चाहिए। एकदम से भागना ही पड़ जाए, नहीं भैया बहुत हो गया, चलो
0: और
1: यहाँ
0: फिर
1: से।
0: फिसलने का डर भी है ना,
1: बिल्कुल।
0: कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो वे गिर गए, तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत
1: बिल्कुल।
0: दुखदायक हो
1: और
0: जाएगी।
1: पानी भर गया अगर, और हम ऐसे ही चल दिए उस पानी भरे में, और कुछ पैरों के नीचे आ गया, तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो।
0: और उसमें ना हमारे चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना उससे छींटे भी नहीं उड़ते हैं, और वो इतनी लाइट होती है ना कि वो धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें। तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम, मौसम अच्छा है, और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो गई।
1: इसलिए

0: है ना, कि वो धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें। तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम, मौसम अच्छा है, और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो गई।
1: इसलिए
0: इसलिए

0: सुंदर लगता है। और यही कारण है कि मॉनसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है उतनी ही संवेदनशील भी। बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद सभी तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो।
1: और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक
0: अंतराल
1: के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है
1: सखी
0: सखी सहेली।
1: सहेली।
0: और हम बारिश की बातें कर रहे थे आरती।
1: बारिश की बातें कर रहे थे हम, और साथ ही तेज, जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहां पे कभी कभी, ऐसी जगहों पे जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही, और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें।
0: बिल्कुल रखना जरूरी है। अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना।
1: बिल्कुल। और जो
0: इसलिए
1: जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती है ना वो तो बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है। और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डों की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरने, तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है। तो
1: बिल्कुल।
0: भले ही आज रील ना बन पाए तो उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है, पर
1: बाद में
0: हमारे
1: बना लीजिए अगली बार।
0: हाँ, क्योंकि जान है तो ये खूबसूरत जहान है।
1: बिल्कुल। और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं।
0: ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाए, पर्याप्त दूरी बनाकर रखे और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए, और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, और पर्याप्त पानी पिएं, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोग अभी बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हो तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।
0: और सबसे जरूरी बात है आरती कि जब भी हम बाहर जाएं स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में
1: बिल्कुल।
0: होता
1: बहुत
0: है।
1: बहुत
0: जी
1: सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ यात्रा करते हैं तो मानसून की हर बूंद यादों का

0: मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है, क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, जो प्रकृति है वो सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं दी गई, जारी की गई है, तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए।
1: और आप क्या करें,
0: एक गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: हाँ सुना ली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी कल ही मेरी दो छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई, मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी से की गई उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही।
0: बिल्कुल
1: क्या बात है।
0: बिल्कुल, यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी बरतते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से।

0: हमारे एक साथी जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय ये नजारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियां, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज में जा रहे हैं, से ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे, सड़क पे भी ध्यान रखिए, जहां पे आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर, मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है। और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है।
0: ये तो है। और एक हमारे साथी हैं जो अभी वहीं पे हैं, मतलब अभी घूमने गए हुए हैं, तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही है, यानी भूस्खलन भी हो रहा है, और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए हैं तो वो भी होटल में रुके हुए हैं, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रहिए जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता।
1: वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है। लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खान पान में सावधानी बेहद जरूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद, मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं, जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है। और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जरूरी सावधानियां, हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग, हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही ये कहते हैं कि अच्छी पकड़ वाले स्किड जूते पहने, स्किड एंटी स्किड जूते पहने, और खान पान हमेशा ताजा भोजन खाए, साफ या उबला पानी पिए। इसी तरह की बातें
0: एक हमारे
1: लिखी।
0: साथी हैं जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे, मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाए क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए। बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई, इन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना।
1: ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं करना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए। उसे हमें बहुत सावधानी से उस वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना चाहिए।
0: हम क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी तो होती है साथ में परिवार की, या जो भी लोग हमारे साथ में गए हैं, इतने सारे लोग गए हुए हैं,
1: जी
0: तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो
1: जी
0: चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सके, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन जरूर करिए।
1: और सबसे जरूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती? एक गाना
0: एक
1: सुन ले,
0: गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में, है ना
1: एक
0: सोनाली?
1: हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपनी नहीं समझते उसे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है
0: बिल्कुल.
1: ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, एक 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका, मैंने
0: ओहो.
1: पलट कर देखा तो बोला चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं पर मन में विचार आया कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा
0: वो
1: ही
0: तो है,
1: करते हैं।
0: बच्चे वही
1: बहुत
0: सीखते हैं
1: सही बात
0: जो,
1: लिखी है
0: बिल्कुल
1: कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं, तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी होती है उसी में थूकना है, और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत
0: बिल्कुल.
1: जरूरी है, थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं. मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहां तहां थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज होती है जिसे वो आपके मुंह में स्प्रे कर देते हैं, जिसे आपके मुंह में सूजन हो जाती है और आपका मुंह सूज जाता है, यही सजा दी जाती है. तो ये इस तरीके की चीजें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही है इस तरीके की चीज. लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना बहुत गलत है, तो
1: जी
0: वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझिए
1: जी
0: सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है. तो ये इस तरीके की चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही
1: वैसे
0: हमें
1: ही अपने घर के
0: सड़क को,
1: बाहर भी स्वच्छता का
0: बिल्कुल.
1: ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना लग जाता है।
0: अरे
1: तो ये तो बहुत सही है
0: इसी
1: इस।
0: तरीके की जब जब इस तरह की जब सजा मिलती है या इस तरह की चीजें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज को थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ जाएंगे इसलिए ना करें. तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे.
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं, और मानसिकता सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है।
0: एक साथी लिखते हैं कि अपने अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज को नहीं होना चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बस किसी ऑटो में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पर चल रहे हैं लोग उन पे भी कभी कभी उनके कपड़ों पर गिर जाता है कभी कभी इस तरह. तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से नहीं करना
1: कई बार
0: चाहिए.
1: जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं, पर जरूरी नहीं नहीं वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते हैं, तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है। और
0: बिल्कुल.
1: एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं।

0: गंदगी से गलियां, दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं, जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं, और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है, क्योंकि हवा से जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा
1: बिल्कुल
0: कहना ही
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है। तो ऐसी आदतें न केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियां फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें।
0: एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूँ, ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है। और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है, ये तो लोगों को डराने के लिए, एक आदत लगाने के लिए दंड है, पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक गुजरात के बड़ौदा जो बस अड्डा है वहां पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है। और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली, दोनों हाथों से उसको बना रहे थे, तो सिक्योरिटी वाले आए और 200 रुपए का दंड किया का जुर्माना भी लगाया, और तंबाकू जो बना रहे थे वो पूड़ी उसको भी ले गए। और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
0: और अब गीत सुन ले।
1: गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ सोनाली, अब हम बात करेंगे कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना। तो हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल की छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखिए अपने हाथ को, और वहां पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज लगा लीजिए, ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम और डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियां सट जाती हैं या पकौड़ियां तलते समय उंगलियां तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी।
1: एक हमारे

0: साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ अगर कट जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है, और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है, बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था तो चीनी लगा देती थी, जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए, हो सके तो अगर ज्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास जाना
1: बिल्कुल
0: जरूरी है।
1: ज्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें,
0: बिल्कुल
1: सीधे
0: तुरंत ही
1: डॉक्टर
0: डॉक्टर
1: के
0: के
1: पास
0: पास
1: जाएं
0: जी।
1: और छोटी मोटी चीजों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखती है कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं, वैसे आप कोई चीज तरह की कोई चीज आप लगा सकते हैं। और साथी आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह है इनको
0: जी
1: काट के लगा सकते हैं।
0: एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं, पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है, उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना जरूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है, और उसके बाद में साफ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो, सीधी बर्फ ना लगाए और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना, उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन जो है वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई अगर बहुत ज्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
0: और आप क्या करें,
1: ये गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो आरती, सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सखी सहेली।
1: ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोताओ, आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजन अवकाश के बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि नए कानून के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं और प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में प्रभावी नहीं होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
3: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संसद ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने आज ये विधेयक पारित कर दिया। राज्यसभा कल ही इसे पारित कर चुकी है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही में लगातार व्यवधान हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सांसदों से दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के कुशल क्षेम की भी कामना की। पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस व्यक्त करते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा की वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव का मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 20%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 48% मतदान दर्ज हुआ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत थेरी मौथो और जॉर्जिया के राजदूत वक्तंग आउशली से मुलाकात की। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में परिकल्पित लोकतांत्रिक सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की दमनात्मक कार्रवाई जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2-3 दिन तक तेज वर्षा की संभावना है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ओंटारियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोताओ, आइए एक बार पुनः सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: अच्छा जी,
1: सर आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था, सर आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया, आज क्या गाना सुनाने वाले हैं बताइए।
1: जी मैं आज सुनाता हूँ

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी, अब मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है?
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि हम दिव्यांग आदमी है, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के पनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे, हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कुसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइशें आती
1: नहीं
0: हैं।
1: सर जी, नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम एक ही है।
1: नहीं, सर उस नाम से दतरंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो
1: जी सर
0: बताइए
1: जी,
0: क्या हाल चाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब भाई सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या
1: हाँ
0: गतिविधियां चल रही
1: अभी
0: हैं?
1: धान का रोपाई का काम जारी है।
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़।
1: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़ जी
0: किस किस
1: में।
0: तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी हमारे यहाँ।
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी,
0: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
0: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं सिमीपाल गोयल पहाड़गढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हालचाल है?
1: सर ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर।
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल।
0: अच्छा।
1: थे कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी है हमारी आज। तो आपके शो सुनते हैं सभी
0: जी,
1: जो संडे को आते हो आप शाम को हवा महल में, तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए कितने सारे श्रोता फोन करते हैं, लेकिन सभी का फोन नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं, और आप उन खुश नसीबों में से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: सर फिल्म का नाम है डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: क्या करना है अपने सेहत के वास्ते, फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर मैं।
1: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
0: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
1: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
0: छुट्टी दिन के सर आपका रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते हैं सर।
1: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: आज बगावत फिल्म का है सर, नागंता रूप है तेरा।
1: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: कौन है यहाँ?
1: गोरा बदन छुपा के गोरी नहा रही है।
0: ये जुर्रत, ये गुस्ताखी, जानता नहीं हम कौन हैं।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अए ये नागन डस ले तो क्या कहना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर,
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं।
1: मैं कश्मीर सोना मरग से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई कैसे हैं आप।
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त।
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था, यहाँ पे बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और
1: जी
0: अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है।
1: हाँ, आज धूप भी है।
0: कश्मीर में
1: हाँ
0: बारिश
1: जी,
0: का मौसम किन महीनों में होता है।
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हर
1: हाँ,
0: महीने होता
1: बीच
0: है।
1: बीच में होते हैं। हाँ
0: सोनमर्ग
1: जी,
0: तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है।
1: वो जाती है लेह लद्दाख की,
0: जी
1: गजला।
0: जी आप गए हैं उस तरफ।
1: हाँ, मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख
1: हाँ
0: जाने के
1: जी,
0: लिए कौन कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है। फिटनेस किस तरह की होनी
1: बस
0: चाहिए।
1: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग 1 दिन और 1 रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है।
1: हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है, ऐसा लगता है।
0: जी, लेकिन वहाँ घूमने लायक इलाके हैं।
1: हाँ सर,
0: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी।
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, तूने और रंगी इलाके सा जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: ओ ओ, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है भाई?
1: सर मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूँ।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर मैं कहलगांव में ही, एक मार्च में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहाँ से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो कोई डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं आपने?
1: जी सर, मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ संगीत में।
0: और ये जो संगीत की शिक्षा हो रही है, ये गायन की हो रही है या वादन की हो रही है?
1: सर जी मैं गायन सीखता हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए हमारे लिए क्या सुनवाने वाले हैं आज आप?
1: सर मैं तो दस्तक फिल्म का एक गीत सुना हूँ, और आवाज लता दीदी की है, और गाने के बोल हैं बैया ना धरो बलमा।
0: क्या बात है, इससे मिलती जुलती कोई शास्त्रीय बंदिश याद है आपको?
1: जी सर, एक वो गाना है ना, राग देश, मुझे याद है, अगर कहेंगे तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ।
0: जरूर।
1: ये राग देश है। बादल रे उमड़ घुमड़ घन बर से, बिजली चमक जिया डरात बादल रे, ये सब सीखा है।
0: वाह वाह, शानदार। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: जी सर।
0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर हम बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट उमरिया मध्य प्रदेश से, पृथ्वीराज
0: जी बोलिए बोलिए।
1: यादव।
0: पृथ्वीराज यादव जी, मुझे ये बताइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहे हैं आप?
1: जी, इसका एक एरिया है सर, अपना गांव न्यूसी लगता है सर।
0: अच्छा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में कितने गांव आते हैं?
1: गांव तो बहुत सारे आते हैं, 105 के करीब।
0: अरे बाप रे। और ये बारिश के दिनों में तो बांधवगढ़ में पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है ना?
1: जी, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए बंद होता है सर।
0: अच्छा, इस बीच में आप लोग तो चूंकि गांव में ही हैं और उस दायरे के अंदर हैं, तो क्या आपको साइटिंग्स होती हैं? आपको दिखते हैं टाइगर्स?
1: जी, टाइगर तो हमेशा 12 महीने दिखते हैं सर, क्योंकि अपना गांव एकदम कोर से सटा हुआ है जंगल से, तो उनके दर्शन तो हमें सुबह शाम ही हो जाते हैं
0: आप लोग किस तरह की सावधानियां रखते हैं ताकि कोई घटना ना हो?
1: सर। देर रात जैसे टाइम से हम जब लोग जाते हैं तो दिन में जाते हैं, शाम के या सुबह टाइम ज्यादा जंगल में नहीं जाते सर।
0: मान लीजिए कि हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना हो, हमें या हमारे
1: जी
0: किसी साथी को, तो आप तो उस इलाके के हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है जब साइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं?
1: सर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दिन
0: नवंबर से फरवरी, और दिन का कौन सा वक्त?
1: का वक्त वही सर, 9 से 12।
0: अच्छा, 9 से 12
1: जी
0: में साइटिंग ज्यादा क्यों होती है भाई?
1: सर, उस समय सब अपने विचरण के लिए निकलते हैं ना सर।
0: अच्छा, आपको
1: जी
0: सबसे अच्छा जो दृश्य देखने को मिला वो क्या मिला था?
1: सर, यहाँ तो सबसे अच्छा दस बांधवगढ़ का एरिया है सर। उसके अलावा एक झरना प्रपात है हमारे गांव के बाजू में, वो भी बहुत अच्छा है सर। और हमारे यहाँ के मोर बहुत अच्छे हैं सर।
0: मोर? अरे वाह
1: जी
0: वाह
1: जी
0: वाह, बहुत ही बढ़िया। यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह रहे हैं।
1: जी प्रकृति का संदार है सर यहाँ
0: और आपका काम क्या है भाई
1: सर। हमारे ऑनलाइन डिलीवरी वाला काम करते हैं सर।
0: उस इलाके में?
1: जी जी जी
0: तो मोटर बाइक से घूमते हैं?
1: जी जी
0: अच्छा, विविध भारती की आपके जीवन में क्या जगह है?
1: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर। हमें सूचना, ज्ञान, मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी के अंदर शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी, तो यहीं से हम पले बढ़े हैं। और सबसे अच्छा रेडियो ही है, रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
1: सर हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले। ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।
0: चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

वहां बैठा थी मैं, तब झूम के भंगड़ा पांदे हैं। क्या आपकी वहां बारातों में

0: हेलो फरमाइश
1: अस्सलाम वालेकुम यानुस भाई।
0: जी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं?
1: हिलाल अहमद श्रीनगर से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं भाई आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो सर?
0: जी हम अच्छे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या काम करते हैं जनाब?
1: हम यही शाल काम करते हैं।
0: ओके, तो मुझे फिर ये बताइए कि एक अच्छे पश्मीने की पहचान कैसे की जा सकती है?
1: अच्छी पश्मीने की पहचान, उसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें तो बहुत दाम मिलता है। बाहर कंट्री में भी वो जाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं इस पे, तो अच्छी तरीके से बनाते हैं, फिर हमें बहुत कीमत मिलता है।
0: बहुत शुक्रिया। मुझे
1: हाँ
0: एक और बात बताइए कि ये जो पश्मीना है, कुछ बहुत भारी पश्मीने होते हैं और कुछ कम सर्दियों के लिए होते हैं, तो जो
1: जी,
0: टूरिस्ट वहाँ आते हैं वो किस तरह से पहचाने कि उनकी जरूरत का पश्मीना कौन सा है?
1: टूरिस्ट यहाँ आते सर, वो भी इसे खरीदे, यहाँ उनको भी वो बहुत पसंद है, लेकिन इसमें तो ईमानदारी की बात है। दरअसल जो भी ये बेचेगा तो वो सही होना चाहिए।
0: जी, और एक अच्छा पश्मीना शॉल बनाने में आपको कितना वक्त लगता है?
1: सर इसमें तो बहुत डिजाइन है आते हैं, इसमें मतलब जो इस पर वो नक्शा होता है ना, वो बहुत किस्म के होते हैं, उसमें मुख्तलिफ बड़े वाले छोटे वाले पुरमतन के आते हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। जो पुरमतन होता है ना, उसमें तकरीबन 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने भी लगते हैं, तो जो उसके छोटे साइज वाले हैं उसमें 1 महीना भी लगता है, तो इसी तरीके से हम बनाते हैं।
0: जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई। और अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कुमार सानू की आवाज में फिल्म का नाम है साथी, जिंदगी की तलाश में है, मौत के कितने पास आ गए।
0: वाह क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से, और हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02-2867-02-88, दूसरा टेलीफोन नंबर 0224002462 यानी 02-2400-2462। आपको बता दें कि आज जिन श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स लगे हैं वो अगले दो महीने तक हमें फोन न करें ताकि दूसरे श्रोताओं को मौका मिल सके। तो अब चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का था। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे है और इसी के साथ ही हमारे आज के पहली सभा अब समाप्त होता है। दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी शाम के 6 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:22 हो चुके हैं। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम आज की हमारी दूसरी सभा में।

अब से कुछ ही देर में दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम आप सुनेंगे। 6:05 पर मार्ग कार्यक्रम, पारंपरिक गीत, गायक कलाकार आज हैं बोन रोहनियंग इनबॉन और उनके साथी। शाम 6:25 पर आप सुन पाएंगे जैमी कार्यक्रम, आज भक्ति गीत आप सुनेंगे, गायक कलाकार हैं हेगुआंग सीएले रियाइमे और उनके साथी। संध्यार आंचलिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से हर रोज की तरह शाम 6:45 पर आप सुन सकते हैं। समाचार के बाद दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को हम जारी रखेंगे। शाम 7:00 डिमासा कार्यक्रम के साथ लोकगीत आप सुनेंगे आज गोपीनाथ हाफलोंगबार और साथियों की आवाज़ों में। शाम 7:20 पर कार्बी कार्यक्रम में आधुनिक गीतों का आनंद आप लेंगे आज सोनिका मिलिकपी और साथियों की आवाज़ों में। उसके बाद कुकी कार्यक्रम में आधुनिक गीत चोंगनेइथम चोंगलॉय और साथियों के गाए सुन पाएंगे आप रात 7:40 पर।

दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के पश्चात रात 8 बजे समय रहेगा कृषि संबंधित कार्यक्रम किसान वाणी का, और उसके बाद रात 8:30 पर फिल्मी गीत आप सुनेंगे। समाचार संध्या रात 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आप आज सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम। आज गायक कलाकार हरिहरन के गाए कुछ बेहतरीन गजलों का आनंद हम ले पाएंगे। और अंत में रात 9:30 से चित्रगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। श्रोताओं, ये थी आज की हमारी दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

मार पारंपरिक गीतों का आनंद आप ले रहे थे बोन रोहनियंग इनबोन और साथियों की आवाज़ों में। इसी के साथ ही आज का मार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। अब सुनते हैं जेमी कार्यक्रम, भक्ति गीत, गायक कलाकार हैं हेगुआंग सियेले रियाई में और उनके साथी।

아이 할라이샤 시바 디에 신앙몽 아이 할라이샤 실라낭 타올라 아낭 아이 조리샤 랄라낭 타올라낭

아이후리마마캄세 사부낭.

아야우 사라비싱 가지동.

要查拉比辛哈就地东。

爱自己的啥，写自己排版。

爱将老姐子上，高雄瓦工。

आप सुन रहे थे। इसी के साथ ही आज का डिमासा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र से। अब समय है कार्बी कार्यक्रम का। आधुनिक गीत हम सुनेंगे। गायक कलाकार हैं सोनिका मिलिकपी और उनके साथी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सोनिका मिलिकपी और साथियों की आवाज़ों में कार्बी आधुनिक गीत। इसी के साथ ही आज का कार्बी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं हम कुकी कार्यक्रम। दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत कुकी कार्यक्रम में आधुनिक गीत हम सुनेंगे चोंगनेथम चोंगलॉय और साथियों की आवाज़ों में।

चौंगनी थेम चौंगलोई और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कुकी आधुनिक गीत। इसी के साथ ही आज का कुकी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और कुकी कार्यक्रम के साथ ही समाप्त होती है आज की दूसरी सभा की स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब श्रोताओं आइए सुनते हैं हम कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है
1: भारत सरकार की कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
0: किसान वाणी। श्रोताओ नमस्कार, आज के इस कड़ी के लेकर उपस्थित हूँ मैं दीप्ति
2: और मैं आपका दोस्त शांतनु मजुमदार। आप सभी श्रोताओं को हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम में।
0: श्रोताओ, हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी को कॉफी में छाया प्रबंधन यानी कि कॉफी की खेती करने के लिए छाव यानी शेड होना क्यों जरूरी है, इस विषय में विस्तार से जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए है कॉफी बोर्ड के सीनियर लायसन ऑफिसर शान मोहम्मद आली जी। आप हमें इस विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे और हर रोज की तरह हम आप सभी को सुनवाएंगे स्थानीय भाषा के एक प्यारी सी लोकगीत। सबसे पहले हम हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं, जो बहुत सारे जानकारियां लेकर आए हैं हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते।
3: नमस्ते।
0: तो सर, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
0: आज हम जानकारी लेंगे शेड मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑन कॉफी कल्टीवेशन के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी फसल है, हर फसल के लिए सूरज का जो रोशनी है ये होना बहुत जरूरी है। मिट्टी के सोलराइजेशन बोलिए, सूर्य की किरण के माध्यम से मिट्टी का शोधन होना बहुत एक बड़ी बात है और पेड़ पौधों के लिए सूर्य रोशनी का अहम भूमिका है। तो कॉफी के खेती के लिए शेड मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस जो है, जो जरूरत है, ये क्यों है?
3: हाँ, आप सही क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली कॉफी जो हम लोग उगाते हैं, कॉफी लगाते हैं, तो इंडियन कंडीशन में शेड होना जरूरी है। बेसिकली आप जो सही बोला है कि सभी पौधे को, जो भी ग्रीन खेत होता है, तो उसके लिए सनलाइट जरूरी होता है। तो कॉफी के लिए भी बिल्कुल जरूरी है सनलाइट, लेकिन उसमें क्या है, रश्मि थोड़ा कम होना चाहिए। कॉफी इंडिया में दो तरफ का होता है, एक है अरेबिका कॉफी और एक रबस्ता। तो आपका अरेबिका कॉफी में हम लोग का शेड थोड़ा ज़्यादा चाहिए, जैसे कि 50-60%, और हम लोग का रबस्ता में थोड़ा कम चाहिए, मतलब उसको 40-50%। तो वही एक मेजर रीजन है। कॉफी इज ए शेड लविंग प्लांट, मतलब सनलाइट तो चाहिए लेकिन कम चाहिए थोड़ा। अभी ब्राजीलियन कंडीशन में, जहाँ में मेन कॉफी ज़्यादा प्रोड्यूसर ब्राज़ील है, तो ब्राजीलियन कंडीशन में ओपनली होता है, उधर में एनवायरनमेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका वो ओपन में यह होता है, और इंडियन कंडीशन में शेड इज मस्त।
0: हमारे देश में गर्मी ज्यादा है।
3: हाँ, वो भी एक बात है, गर्मी ज्यादा है और ऊपर से हम लोग का अदर जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो भी थोड़ा इधर में इम्पेक्ट करता है। और बेसिकली और एक बता सकता है कि इंडियन कॉफी है सेट के लिए ही प्रीमियम कॉफी बोलता है
0: वो,
3: या वर्ल्ड में एक मतलब इंडिया कॉफी का एक अच्छा नाम है सेट के लिए। इसको बोलता है सेट ग्रोन कॉफी, मतलब दुनिया में कहीं भी जाइए, आप मैक्सिमम कंट्रीज जो कॉफ़ी उगाता है उधर में मोस्टली ओपन कंडीशन में होता है, मतलब कुछ ही कंट्री को छोड़ के। तो इंडिया वन ऑफ देम जहाँ में हम लोग फॉरेस्ट एरिया में लगाता है, जंगल एरिया में। मैं अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाओ तो नॉर्थ ईस्ट में जो हम लोग कॉफ़ी शुरू किया था, इनिशियली हम लोग का मेन मोटो ही था कि डिफॉरेस्टेशन को रुका जाए, क्योंकि कॉफ़ी फॉरेस्ट का अंदर में होता है, उसको छाया चाहिए, सेट ट्री चाहिए, उसका अंदर में लगाने से मतलब कॉफ़ी को एक छाया मिल गया, मतलब सेट मिल गया। ऊपर से हम लोग कॉफ़ी को छाया लगता है, इसलिए छाया गच्ची को भी हम लोग नहीं काट रहे। तो अल्टीमेटली वी आर कंजर्विंग द फॉरेस्ट, ये हम लोग का एक वन ऑफ द मोटो था। और दूसरा बात, आप अगर गच्ची नहीं काटेंगे आपका सॉइल भी कंजर्व हो जाएगा। तो हम लोग दो मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर में हम लोग इनिशियली काम कर रहा है। अभी हम लोग एक स्थिति में पहुंच गया है कॉफ़ी नॉर्थ ईस्ट में, अभी लगभग थोड़ा पुराना हो गया है, जैसे कि हमारा हाफलॉन्ग में तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो गया है कॉफ़ी का
2: जी।
3: तो हम लोग अभी एक नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है जहां में हम लोग अभी प्रोडक्शन का बारे में भी सोच रहे हैं, अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी सोच रहे हैं।
4: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
5: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
4: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
6: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
7: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
8: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वहीं रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
9: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
4: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
0: तो कॉफी लगाने से बहुत सारे फायदे हैं हमारे परिवेश को।
3: बिल्कुल।
0: तो आपने कहा है कि दो तरह की कॉफी है, एक है रोबस्टा और दूसरा है
3: अराबिका।
0: तो दोनों के लिए शेड का जो प्रबंधन है क्या अलग अलग है?
3: हाँ, अराबिका के लिए थोड़ा ज्यादा शेड चाहिए क्योंकि इसका जो लीफ जो होता है, पत्ता जो होता है, इसका पत्ता से मतलब जो ट्रांसपिरेशन लॉस थोड़ा कम होता है और प्लस हम लोग का जो लीफ स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग का जो पानी चाहिए वो मतलब उसके लिए मतलब एक डिपेंडेंट है। और दूसरा है हम लोग का जो रूट सिस्टम है, अरबिका मतलब थोड़ा डीप रूटेड है और रबस्ता शैलो रूटेड। कॉफ़ी में देखिए और एक बात भी है, शेड का बात तो है, पानी का भी बात है, दोनों में थोड़ा लिंक है। अभी अगर आपका सेट कंडीशन में लगाएगा, सेट चाहिए चाहिए, तो उसको अगर हम लोग प्रॉपर सेट देगा तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। कॉफ़ी का वेजिटेटिव ग्रोथ बोलता है, मतलब जो पौधा को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और दूसरा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर सेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अरबिका में हम लोग 50-60% सेट देता है, मतलब आधा धूप गिरना है, आधा साया होना चाहिए। और इसमें और एक बात क्या है, हमारा जो सेट ट्रीज होता है, सेट ट्रीज में भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उसको चूज करने के लिए भी कॉफी के लिए हर सेट मतलब बेनिफिशियल है। हाँ, जैसे कि आप साल ट्री, सेगुन, गोमारी, ये सब का अंदर में आप कॉफी नहीं उगा सकता है। कॉफी तो ऐसे होगा लेकिन उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा और उसका हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पट्टा होता है बड़ा होता है और बारिश गिरेगा उसका भी थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट रहेगा। ऊपर से उसका येलो केमिक इफेक्ट बोलता है, केमिकल रिलीज होता है सेगुन साल से, तो इसके लिए इसका अंदर में हम लोग कॉफी नहीं उगाते।
0: यानी कि हर तरह के पेड़ों के नीचे हम कॉफी उगा नहीं सकते।
3: हाँ, ऐसे भी बोल सकता है लेकिन ओनली फ्यू सिलेक्टिव प्लांट है, जैसे कि साल, गोमारी, सेगुन, ये सब को हम लोग हटा सकते हैं। और बाकी जो छोटा पत्ता वाला होता है वो सब अच्छा है। और ऊपर से और एक बात जरूरी है कि हरी पत्ता वाला मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, एवरग्रीन ट्रीज, मतलब वो ज़्यादा होना चाहिए। डेसीडुअस मतलब जो एक सीजन में पत्ता सब गिर जाता है वो वाला सेट अच्छा नहीं होता है। मतलब वो चाहिए बीस बीस में, लेकिन मैक्सिमम चाहिए हम लोग जो साल भर पत्ता रहे। आसान सा एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है, मतलब सेट का मेन पर्पज ही है एक माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट इन द सेंस, तो कॉफी को मतलब एक अच्छा माहौल मिलता है सांस लेने के लिए, ये लेने के लिए, वही है मतलब।
0: जी, जी, जी।
2: तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे कि अभी आपने बोले कुछ कुछ पेड़ों को छोड़ के बाकी पेड़ हम लगा सकते हैं, तो उसमें से कौन कौन सा पेड़ सबसे उपयोगी है हमारे डिमासा अंचल में वातावरण के अनुसार?
3: हाँ देखिए, इसमें हम लोग अगर दिमाहसाव का बात स्पेसिफिकली बोलते हैं तो इधर में तो हम लोग का नोटिस आप जानते ही है कि बहुत सारा जंगल ट्रीज जो लोकल ट्रीज बोलते हैं हम लोग, वो भी इधर में है। तो वो सब हम लोग एक्चुअली मैक्सिमम जो लोकल ट्रीज है, जैसे कि आपका फाइकस बोलता है हम लोग, पीपल्स ट्री भी बोलता है, तो बनियान ट्री भी बोलता है, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा होता है आपका जो सीरीज, तो वो भी अच्छा होता है। कैथल बोलता है ना, जैक फ्रूट, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, उसका सेट भी कॉफी के लिए अच्छा होता है। मैंगो भी लगा सकता है, कोई भी छोटा पट्टा वाला थ्रू आउट द ईयर जो पट्टा नहीं गिरता है वो वाला अच्छा है। और जैसे कि आपका और एक हम लोग ग्रेविलिया रोबस्ता बोलता है उसको, सिल्वर ओक ट्रीज, सिल्वर ओक ट्रीज हम लोग, ये तो बाहर से आने वाला है, इंडिया का नहीं ओरिजिनली, वो भी हम लोग के लिए कॉफी के लिए सूटेबल है और इधर में है हाफलोंग में। और उसका अंदर में हम लोग दादब बोल के एक गच्ची है, दादब हम लोग मांदर गच्ची भी बोलता है, मांदर का जो काटा नहीं होने वाला, उसका एक क्या नेचर है, वो नाइट्रोजन भी सॉइल में देता है थ्रू पट्टा से, और उसका मतलब जो गच्ची उसका वो एनवायरमेंट ठंडा रहता है, तो एक्चुअली मिजोरम में वो लोग फरतुआ बोलता है, फरतुआ मतलब वो गच्ची से पट्टा से पानी गिरता है नीचे में, तो नीचे का जो एनवायरमेंट है वो कूल रखता है। कॉफी के लिए मतलब वो बहुत अच्छा चीज है, वो सब हम लोग कर सकते हैं और इधर में होता भी है।
2: हाँ, हमारे निमासा अंचल में आप जो बोले मांदर गाछ, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है।
3: यस यस
2: जी। तो सर आज जो हम शेड मैनेजमेंट के बारे में, तो बहुत श्रोता ये भी जानना चाहेंगे, मन में सवाल पैदा हो सकता है, शेड बोले तो पैर के नीचे कॉफी का खेत, घर का अंदर नहीं, पॉलिथीन के नीचे नहीं?
3: नहीं नहीं नहीं, हाँ वो एकदम बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आप, ये प्रश्न सबका मन में आना चाहिए। सपोज जो भी हमारा श्रोता सुन रहे हैं वो लोग सोचते होंगे कि सेट सेट बोल रहा है तो ग्रीन हाउस में क्यों नहीं कर, एक्चुअली ग्रीन हाउस में होता है, लेकिन कॉफी ऐसा एक चीज है, ये मतलब इतना छोटा मोटा मतलब हम लोग का प्लांट नहीं है, जैसे कि हम लोग रबी क्रॉप्स जो रबी शस्य बोलता है वो करता है, ऐसा वाला नहीं है। तो इसको एक ओपन एनवायरमेंट चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा है हम लोग का ये जंगल का अंदर में ये रहता है, इसमें इकोनॉमिकल नहीं होता है, मतलब इसलिए हम लोग ग्रीन हाउस या ये में नहीं होता है, तो मेनली शेडी ट्री में ही लगाना है।
10: सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिलता है हरिया को। हरिया अब आप सबको बताएंगे अपनी सफलता का राज।
11: मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप भी अपने खेतों में उन्नत फसल उगा सकते हैं।
12: वो कैसे?
11: बस जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत मिलाइए ये नंबर 1800-1501551।
13: ये किसका नंबर है भाई?
11: किसान कॉल सेंटर का, जहां विशेषज्ञ आपको खेती की समस्याओं का हल देंगे तुरंत।
14: अरे भाई, विशेषज्ञ हर समय थोड़े ही बैठा मिलेगा?
11: बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, साल के 365 दिन मिलेगा, वो भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।
13: पर भैया, लंबी बात करेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे।
11: कोई पैसे नहीं, मोबाइल से या दूसरे फोन से किसान कॉल सेंटर मुफ्त कॉल करो, सलाह के भी पैसे नहीं।
15: सच
11: 16 आने सच।
12: किसान भाई खेती की समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर मुफ्त संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
0: एक मैच्योर्ड कॉफी का जो पेड़ है इसका जो हाइट होता है ये कितना होता है और इसके ऊपर डिपेंड करके शेड का हाइट कितना होना चाहिए?
15: अच्छा अच्छा, ये तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक बात है, जो हमारा कॉफी का दो वेराइटी होता है, एक अरेबिका एक रोबस्ता। एक्चुअली अरेबिका क्या होता है, वो थोड़ा छोटा होता है
0: जी।
15: बेसिकली उसको हम लोग कॉफी को एक शेप देना है, उसको हम लोग प्रूनिंग ट्रेनिंग करता है, मतलब उसको कितना हाइट में रखने के लिए। तो अरेबिका का दो टाइप का होता है, एक ड्वार्फ और एक टॉल। टॉल को हम लोग मतलब 4.5 to 5 feet ऐसा हाइट में रखता है, जैसे कि टू टायर बोलता है। पहले में हम लोग जब 2.5 फीट हो जाएगा गाछी तो तब हम लोग ऊपर में टॉपिंग बोलता है, उसका जो टॉप है उसको तोड़ता है। तोड़ देने से उसको हाइट तो उसी में रुक जाता है और बाकी मतलब उसका ब्रांचिंग ज़्यादा सकत होगा और मेन गाछी भी सकत होगा, उसको मतलब ऊपर में नहीं जाएगा। अगर आप छोड़ देगा तो ऊपर ही जाता रहेगा कॉफी, ऐसा भी है। तो उसको बूस्ट शेप देने के लिए हम लोग 2.5 में मेंटेन करता है। उसका बाद में वो सब जब एक थोड़ा अच्छा वाला मतलब गच्ची हो जाएगा तो उसका बाद में उसको फिर सेकंड टायर बोलता है हम लोग, और एक ब्रांच ऊपर में अलाउ करता है तो उसको हम लोग सेकंड टायर बोलता है। वो 4.5 to 5 feet तक मतलब वो टॉपिंग करता है। दैट मींस टॉल अरबिका में 2.5 to 5 feet तक हम लोग मेंटेन करता है। और एक द्वार्फ अरबिका, द्वार्फ मतलब उसका वेराइटी छोटा वाला है, शॉर्ट स्टेसर का होता है, तो उसको हम लोग मेंटेन करता है 3 to 5 feet, एक ही टॉपिंग, उसका सेकंड टायर नहीं देता है जनरली, एक ही में 3 feet या 5 feet में उसको काट देता है मतलब वो टॉपिंग। तो रोबस्ता के लिए उसको सिंगल टायर बोलता है हम लोग, रोबस्ता के लिए 3.5 to 4 feet में हम लोग टॉपिंग करता है। एक्चुअली हमारा इधर में देखिए दिमा हसाव में मैक्सिमम हम लोग का जो एवरेज हाइट है 5 to 5.5 feet है, तो इसलिए हम लोग 3.5 feet में मेंटेन करने से अच्छा है क्योंकि हार्वेस्टिंग के लिए ईजी होता है। ऊपर से रोबस्ता का एक नेचर ये भी है, जो हम लोग जब टॉपिंग करेगा जहाँ में रुकना चाहिए वो नहीं रुक के थोड़ा बाद में मतलब कुछ साल हो जाएगा उसमें ऊपर में थोड़ा और भी बढ़ता है, उसको बोलता है हम लोग सेमी ब्रांच, मतलब ये वही एक बात है। और उसका ऊपर में अभी सेट का जो बाप बोला है अनुपात, सेट में हाइट में डायरेक्ट रोल नहीं है इसमें, लेकिन रोल है वेराइटी में। अरेबिका में ज़्यादा सेट चाहिए, रोबस्ता में कम चाहिए। अरेबिका में और एक मैं बात बोलता हूँ, अरेबिका में हम लोग सेट को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। सपोज अगर आप अरेबिका कॉफ़ी को आप पर थोड़ा भी खुला छोड़ दिया, मतलब जैसे कि आप ओपन कर दिया, उसमें हम लोग 50% रखना था, 50 to 60% हम लोग पूरा एकदम ओपन कर दिया एक जगह में, उसमें क्या होता है एक व्हाइट स्टेम बोरर बोल के एक ठो पोका है इंसेक्ट, तो वो पोका इतना मतलब डेंजर हो गया। अभी इधर में हाफलोंग का जितना भी पुराना कॉफ़ी 50% कॉफ़ी वो पोका से ख़त्म कर दिया। तो वो पोका का क्या होता है, उसको जब ओपन ये मिलता है ना सेट का जो ओपन ये मिलता है, तो उसका मेटिंग होने के लिए वो ऊपर चला जाता है। इधर से वो मेटिंग होने के बाद में इमिडिएटली आके उसको उधर से गच्छी तो देखता है, आके उधर में जो उसका क्रैक्स क्रेविसेस बोलता है हम लोग, मतलब जो फाटा कटा हुआ होता है मतलब गच्छी का मेन गच्छी का, उधर में वो अंडा दे देता है। तो उसी के लिए को वो रुकने के लिए सेट पूरा कवर होने से वो इंसेक्ट मेटिंग मतलब हम लोग चेक कर सकते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अरेबिका कॉफी के लिए, इसलिए सेट मतलब प्लेस ए मेजर रोल हम लोग का कॉफी के लिए,
0: यानी रोग और कीटों से बचाने के लिए भी शेड का होना बहुत जरूरी है।
15: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सर आमतौर पर कॉफी में किस तरह का पेस्ट एंड डिजीज देखा जाता है?
15: हाँ, ये
0: और इनको नियंत्रण करने के लिए, कम करने के लिए शेड कितना जरूरी है?
15: हाँ देखिए, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जो हम लोगों का पुका है वो क्या
0: व्हाइट स्टेम
15: बोरर बोलता है, उसके लिए तो सेट को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ओपन एरिया मिल गया मतलब उसको वो पुका तो धुक गया क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिवेलेंट है, हमारा दिमाग हसाव में पहुंच गया है ये, तो वो खा लेगा आपका पूरा गच्छी खत्म कर देगा। लेकिन दूसरा डिजीज जो रिलेटेड है डायरेक्टली सेट के लिए नहीं होता है। एक्चुअली आपका जो ओवर क्राउडिंग होता है, ज़्यादा बारिश हो गया तो उसमें आप सेट का जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस ज़्यादा नीचे में आ गया, कॉफ़ी का साथ टच कर दिया, मतलब पूरा है ज़्यादा हैवी हो गया, मतलब उसमें सनलाइट नहीं गिरेगा तो वो भी ख़राब है। तो उसको इसलिए सेट को मैनेजमेंट जो बोला है मैंने वर्ड,
3: सेट को रेगुलेट करना भी जरूरी होता है। मतलब पूरा आप ढक के रखने से नहीं होगा, उसको थोड़ा क्लिपिंग करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं लॉपिंग, मतलब थोड़ा ब्रांच को काट देना है, रेगुलेशन करना है, मतलब थोड़ा ड्रेसिंग करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा नीचे जो ब्रांच आता है उसको काट देता है, तो आपको लिफ्ट करना है मिनिमम 30 फीट हाइट तक, मतलब उसको ऊंचा रखना है सेट, उसका नीचे में मतलब कॉफी होता है, मतलब जो शेड होता है उसका शेप अम्ब्रेला का जैसा होना चाहिए, नीचे में कॉफी, बीच में कुछ नहीं, एकदम ऊपर में शेड।
2: जैसे कि सर आप पहले आपने बोले इंडिया का जो कॉफी होते हैं शेड ग्राउंड कॉफी, जो आपने बोले प्रीमियम के नाम से जाना जाता है, तो एक्सपोर्ट में भी इसका क्या कुछ स्पेशल रूल होता है क्या सर?
3: हाँ, अभी एक्सपोर्ट का बहुत रेगुलेशन है, तो अब फिलहाल एक रिसेंट एक रेगुलेशन आया जैसे कि यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन हम लोग का कॉफ़ी एक्सपोर्ट होता है इंडिया का कॉफ़ी, तो उधर में वो लोग क्या है नियम लगाया है कि जो भी कॉफ़ी आप जंगल काट करके कॉफ़ी को लगाया, फॉरेस्ट को डीफॉरेस्ट करके, मतलब फॉरेस्ट को आप काट दिया, काट के कॉफ़ी कर दिया, तो उसका कॉफ़ी वो लोग नहीं लेगा, तो उसको बोलता है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन फ्री रेगुलेशन, वो मतलब ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील, मतलब ये एक इंटरनेशनल लेवल का ये नियम है कि अगर आपका कॉफ़ी 31 दिसंबर 2020 वो लोग डेडलाइन दिया था, उसका आगे में जो कॉफ़ी मतलब आप लगाए ठीक है, लेकिन उसका बाद में आप एक डिफॉरेस्टेटेड एरिया में कॉफ़ी लगाने से उसका कॉफ़ी वो यूरोपियन यूनियन में आप नहीं बेच सकता है, तो वो लोग वो रेगुलेशन मतलब एक ला दिया है, उसमें GPS वगैरह सब करना पड़ेगा, उसको जब एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ से कॉफ़ी हुआ वो उस जगह का GPS लोकेशन भी देना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि कॉफ़ी आप जानते हैं कि कॉफ़ी एक एक्सपोर्ट कम्युनिटी होता है, हमारा दिमा हसाव का कॉफ़ी यूरोप में भी पी रहा है
2: जी।
3: मतलब कहीं ना कहीं से गया होगा, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, ये एक सर्टिफिकेशन है, तो इसलिए हम लोग अभी सेट को इतना मतलब मान्यता हम लोग ओनली इधर में नहीं दे रहा है, पूरा इंटरनेशनली दे रहा है, तो कॉफ़ी का सेट होना बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब ये है कि आपको डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, और हम लोग का इंडियन कॉफ़ी अभी ये सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करने से, कि हम लोग ये कॉफ़ी जो लगाए है ये आगे का फॉरेस्ट एरिया में ही लगाए है, नॉट आफ्टर कटिंग द ट्रीज।
0: श्रोताओ, आज हम बातें कर रहे हैं शेड मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑन कॉफी कल्टीवेशन, इस विषय में हम आगे भी आपको जानकारियां देंगे, लेकिन अब हम आपको सुनवा लेते हैं स्थानीय भाषा के एक प्यारी सी लोकगीत।

0: कॉफ़ी का पेड़ से दूसरा कॉफ़ी का पेड़ का बहुत डिस्टेंस होता है, तो इस बीच क्या हमारे किसान भाई बहन दूसरा और कोई पौधा या पेड़ लगा सकते हैं?
1: हाँ, देखिए जो आप क्वेश्चन पूछा है इसमें एक बात है कि आप कॉफ़ी का बीच में दूसरा गाछी लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब इंटरक्रॉपिंग जो हम लोग कृषि में बोलता है इंटरक्रॉपिंग, तो हम लोग बिल्कुल लगा सकता है। आपका कटहल लगा सकता है, मैंगो लगा सकता है, आम, तो आप तामुल गच्ची भी लगा सकता है। देखिए अभी रोबस्टा कॉफी तामुल गच्ची का अंदर में बहुत अच्छा से हो रहा है, अभी हम लोग का ये रेखो एरिया में भी हो रहा है, रेजोल एरिया में, वो सब में ज़्यादा तामुल गच्ची उसके अंदर में भी कॉफ़ी हो रहा है। तो आप कॉफ़ी मतलब वेराइटी ऑफ ये क्रॉप का साथ इंटरक्रॉप कर सकता है।
0: तो सर हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में कॉफ़ी कल्टीवेशन में हमारे जो स्थानीय किसान भाई बहन हैं उनका कितना इंटरेस्ट आप देखते हैं? क्या वो इंटरेस्टेड है कॉफ़ी प्लांटेशन में हमारे यहाँ के स्थानीय किसान?
1: हाँ, एक्चुअली आदमी लोग तो इंटरेस्टेड है।
0: और एक बात सर, इंटरेस्ट होने के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: हमारे यहाँ के बहुत सारे रिमोट विलेजेस है, रिमोट विलेजेस में जानकारियाँ कैसे पहुँचाते हैं?
1: हम लोग क्या करता है, प्लानिंग करता है, जैसे कि हम एक विलेज में जाएगा उसको हम डेट दे के रख देता है कि आप लोगों को इतना डेट में हम लोग जाएंगे ट्रेनिंग करेंगे, तो उधर में आप लोग इकट्ठा हो जाइए, तो वो लोग का ग्रुप लीडर रहेगा या विलेज हेडमैन जो रहेगा गाबुरा वो लोग को बोल देंगे, तो वो लोग मतलब आदमी को इकट्ठा करके जो हम लोग का कॉफ़ी ग्रोअर भाई है तो वो लोग को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और हम लोग कुछ मतलब हम लोग का जो स्कीम्स होता है सब्सिडी स्कीम्स और कुछ भी हम लोग का जितना भी हम लोग टेक्निकल गाइडेंस देता है वो सब का बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग देता है, उसको बोलता है ऑन फार्म ट्रेनिंग। हम लोग का कुछ ट्रेनिंग होता है रिसर्च सेंटर में, उधर में भी भेजता है, एक्सपोजर स्टडी के लिए भी भेजता है, साउथ इंडिया में भी भेजता है, हमारा जो कार्बी अंगलंग डिफू है उधर में भी हम लोग वो लोग को ट्रेनिंग में भेजता है।
0: जी, और आकाशवाणी हाफलोंग के जो हमारे कार्यक्रम हैं किसान वाणी, इसके माध्यम से भी हमारे यहाँ के किसान भाई बहन जानकारियाँ वो ले सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, ये ऑलरेडी ले सकते हैं, नहीं ले भी रहा है, क्योंकि हम लोग को ऐसा भी आदमी मिला है कि वो लोग ये किसान बनी प्रोग्राम से ही सुना है, इधर में कॉफ़ी बोट हम लोग का कॉफ़ी करने के लिए मदद कर रहा है, क्योंकि कोई कोई रिमोट एरिया है लेकिन जहाँ में किसान बनी प्रोग्राम पहुँच रहा है उसका जरिए भी वो लोग मतलब ये मतलब जान रहा है अभी की कॉफी।
0: तो ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और साथ ही खुशी के बात है,
1: ये
0: इन लोगों को जानकारियां मिल रहे हैं और इन जानकारियों से लाभ भी उनको मिल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम लोग के लिए भी सौभाग्य का बात है।
0: सर आप कॉफी में जो शेड का जरूरत है क्यों जरूरी है, देने से क्या होता है, और कॉफी का जो क्वालिटी है किस तरह से वो प्रीमियम बन जाता है, इन सारे विषय पर विस्तार से बातें की हमारे किसान भाई और बहनों को जानकारी दें। अगर हमारे किसान भाई बहन चाहते हैं कि वो कॉफी उगाए तो कॉफी बोर्ड से वो संपर्क कर सकते हैं जो कि हमारे यहाँ के सरकारी बागान में स्थित है। आप हमारे स्टूडियो पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी और मेरा श्रोताओं को भी।
2: तो श्रोताओं, किसान वाणी कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में मेहमान थे सन मोहम्मद अली, सीनियर लियासन ऑफिसर कॉफी बोर्ड डिमावसा डिस्ट्रिक्ट के।
0: कॉफी के संबंधित इस जानकारी के साथ ही हम समेटने जा रहे हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम, लेकिन जाने से पहले हर रोज की तरह हम आप सभी को याद दिला देते हैं कि अगर इस कार्यक्रम से जुड़ी आपके पास कोई भी सुझाव हो, परामर्श हो, जो आप इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोन के माध्यम से ये हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए डायल कीजिए 0367329905। आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ ही हम समेटते हैं आज के किसानवाणी कार्यक्रम। अगले किसानवाणी कार्यक्रम में आपसे हम फिर रूबरू होंगे एक नए कड़ी के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त शांतनु
0: और मैं दीप्ति आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।
2: नमस्कार।
3: किसानवाणी प्रायोजक थे भारत सरकार की कृषि मंत्रालय।

आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम और गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मासूम फिल्म से तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी। इस गीत को गायक कलाकार थे अनूप घोषाल, आर डी बर्मन का संगीत और गुलजार के बोल थे। अगला गाना आइए हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है विरासत और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, अनु मलिक का संगीत है।

आज के लिए श्रोताओं, फिल्मी गीत को हम यहीं पर हम विराम देते हैं। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी, उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
6: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
8: संकल्प एयरफोर्स और एसआईडीएम के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
9: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
10: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
11: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे समाचार संध्या। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं।
13: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

अब श्रोताओं प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम। आज हम सुनेंगे गायक कलाकार हरिहरन जी के गाए बेहतरीन गजलें।

आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से गजलों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। गजलों के कार्यक्रम में आज हरिहरन जी के गाए बेहतरीन गजलों का आनंद हम ले रहे हैं।

हरी हरन जी के गाए बेहतरीन गज़लों के साथ ही आज का ये गज़लों पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 पर आपने ट्यून किया है।

आपके गीत। दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप

अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, आप पेश है कार्यक्रम चित्रगीत। पहला गाना ये सुनते हैं हम KK की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान। कौसर मुनीर के बोल है और प्रीतम चक्रवर्ती का संगीत।

चित्रगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से। अगला गीत आइए सुनते हैं हम अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में। बाबुल बोस में इस गीत को संगीत से सवारा है और गीत के बोल लिखे हैं रविंदर और नक्श ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अर्पण फिल्म का गीत आइए सुनते हैं हम। लता मंगेशकर की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल।

श्रोताओं, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म अस्तित्व से। इस गीत को लिखा सुखविंदर सिंह ने और संगीतबद्ध भी किया सुखविंदर सिंह ने ही। इस गीत के साथ ही आज का चित्रगीत कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं और चित्रगीत कार्यक्रम के साथ ही आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम भी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है ये, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 10:42 हो चुके हैं। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और यही उम्मीद के साथ कि कल सुबह पहली सभा में आपके समक्ष हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दे। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।